0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: पर मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से

0: 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही जिंदगी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

जेतुच

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर संडे की सुबह। जी हाँ, संडे की खूबसूरत सी सुबह, हल्की सी मुस्कान, चाय के प्याले और अपनों की यादों के साथ और भी स्पेशल हो जाती है। और आज का दिन तो खास है ही, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, मैं अपना नाम तो बता दी थी, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। तो करेंगे बहुत सारी मस्ती, आज फ्रेंडशिप डे है तो कुछ आपके दोस्तों की खास बातें भी जानेंगे। दोस्तों, ये वो रिश्ता है जिसे हम चुनते नहीं। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती वो रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, लेकिन जब कोई दिल के करीब आ जाता है तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस में सबसे पहले हंसते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमारी सैडनेस में बिना बुलाए हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। दोस्ती में वो राज होता है जो किसी भी चीज में नहीं है। दोस्त वो होता है जो बिना बातें बिना बोले हर बात को समझ जाता है। करेंगे बहुत सारी बातें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन, और आप भी मेरे साथ इस प्यारे से शो में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आपको इस पर व्हाट्सएप करना है अपने मित्रों की कुछ खास यादें जो आपके जहन में अभी तक हैं। और जब भी आप मिलते हैं तो लगता नहीं है कि हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, ऐसा लगता है उनसे बातचीत करके कि मुलाकात तो होती रहती है। तो दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों के लिए कुछ पंक्तियां जो कहना चाहते हैं आज, तो कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9।

8 3 7 8 9 6 8 9 6 मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, यहाँ पर आपकी सुबह को खुशनुमा बनाने के लिए आ गई है। संडे की बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग है और बाहर के मौसम की अगर बात करें तो अभी धूप निकल रही है लेकिन हवाएं भी चल रही हैं। और सुनवाती हूँ मैं आपको एक प्यारा सा ट्रैक, अपने हर पल को हर दिन को कैसे जीना है सुनिएगा जरा।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद की सारी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। देखिए, संडे का दिन होता है, बहुत सारे काम होते हैं एक्चुअली जिनको कंप्लीट करना होता है, जो पेंडिंग होते हैं, और कुछ संडे को बस रेस्ट करते हैं कि भैया आज तो हमारा दिन है, हमें रेस्ट करने दीजिए, परेशान मत कीजिए आप, हाँ बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए आकर, ऐसा भी होता है ना। और कुछ मेरी तरह भी है साथी जो संडे के दिन भी ऑफिस आते हैं। दोस्तों, वक्त हुआ है 10:16 और सावन का आज चौथा सोमवार है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन की, रविवार की। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं। मैंने आपसे कहा दोस्तों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने खास फ्रेंड के लिए, तो कह सकते हैं कुछ लाइनें, कुछ शब्द। आज बहुत अच्छा दिन है,

थैंक यू सो मच. एंड कहते हैं ना दोस्तों कि दोस्ती वो नहीं जो हर दिन साथ रहे, दोस्ती वो नहीं जो हर दिन साथ रहे, दोस्ती वो है जो दूर होकर भी दिल के पास रहे. वक्त बदल जाए, रास्ते बदल जाए, लेकिन सच्चा दोस्त हमेशा खास हो. और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं. एंड अभी राइट नाउ हमारे पास मैसेज आया है सबा खान जी का. और हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबा, आपको भी. ये भी बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं और इनसे भी हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है. ये अभी इस समय लाइव हमारे कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं. एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है. ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं शाबरीन जी मिलक से. कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ डियर, आप बताइएगा कैसे हैं आप. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आदाब आरजी खुशी जी, आपको भी आदाब सर. ये मैसेज पहुंचाते हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है पाकिस्तान कराची से राशिद नाजी का. कहते हैं हेलो मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है एडवोकेट नृपेंद्र चौधरी जी का मुरादाबाद से. कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. और ये कहते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे. इन्होंने लिखा है कि तू सिर्फ दोस्त नहीं मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, तू सिर्फ दोस्त नहीं मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, हर सिचुएशन में साथ दिया, हर मूड से समझा. एंड शुक्रिया यार इतना खास बनने के लिए, तू ही तो है सब कुछ. अरे वाह, तू है सब कुछ, अमेजिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइनें हैं. और सच में दोस्त बहुत स्पेशल होते हैं. और सच्चे दोस्त, अच्छे दोस्त हर किसी के पास नहीं होते हैं, जिनके पास होते हैं वो बहुत लकी होते हैं. देखिए हम कितने किस्मत वाले, हमारे साथ इतने सारे दोस्त हैं हमारे. चलिए अब आप भी इतना मत शर्माइए, इतनी सारी मैंने तारीफ कर दी है आपके यहाँ. फटाफट मैसेज पहुँचाओ. जब तक आप मुझे मैसेज पहुँचाते हैं तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ एक शानदार ट्रैक फ्रॉम द मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी से अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़. तेरा यार हूँ मैं. तो चलिए सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं हम.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रेंडशिप डे, और फ्रेंडशिप डे पर हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, कुछ गाने भी मैंने प्ले किए, आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना, तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार, कुमार सानू साथ में उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। ये गाना हमने आप सभी को डेडिकेट किया था क्योंकि आप सब बहुत प्यारे हैं। थोड़ा सा अगर मैसेज लेट हो जाते तो थोड़ा सा आप हो नाराज़ ही हो जाते हैं, लेकिन हम मना भी लेते हैं आपको। और आपको बताएं दोस्तों, आज और स्पेशल डे है। आज और स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिस्टर डे। दोस्तों, आज हम उस रिश्ते की जिसमें प्यार भी है, लड़ाई भी है, शिकायत भी है और सबसे ज़्यादा केयर भी है, आज नेशनल सिस्टर डे यानी बहन के नाम एक खास दिन। अब बहन का रिश्ता भी बड़ा कमाल का होता है ना, घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी से लड़ाई होती है तो बहन से होती है ना। मेरी चीज़ मत छूना, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा ड्रेस क्यों पहना आपने, मतलब छोटी सिस्टर को बड़ी बहन बोलती है, तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना है। हाँ, बहनों में वो नोक झोंक होती है, वो प्यार होता है। एंड जितनी भी मेरी सिस्टर्स मुझे सुन रही हैं, तो आप सभी को नेशनल सिस्टर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नेशनल सिस्टर डे। बहन भाई का रिश्ता सबसे प्यारा होता है ना, बहनों का भी रिश्ता बहुत प्यारा होता है। बड़ी बहनें इतनी केयर करती हैं छोटी बहन की, चाहे छोटा भाई हो बहन हो, सबको बड़े प्यार से संभाल कर रखती हैं, सबकी केयर करती हैं। कह सकते हैं कि बड़ी जो सिस्टर होती है ना, वो बिल्कुल माँ का रोल निभाती है, कोई कमी नहीं होने देती है मम्मा की तरह। उतना ही प्यार, उतनी ही डांट और उतनी ही केयर होती है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, राम राम जी खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रिया का, और ये कहती है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको भी। जब आप सुबह सुबह आती हैं तो हमारा दिन और खूबसूरत हो जाता है। ओहो रियली, देखिए खुशी का काम है खुशियां बांटना और संडे को स्पेशल बनाना। तो चलिए कुछ सुनते हैं बेहतरीन ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। और देखिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार ना करें जिससे आपको खुद तकलीफ हो। कहते हैं ना कि जो तकलीफ आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो वो किसी दूसरे को भी ना दें। तो इसीलिए अगर आप किसी को कुछ भी जब भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो अच्छा बोलो, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो हमें रिटर्न में मिलता है। शब्द हमारे बहुत पावरफुल होते हैं, हम चाहते हैं कि सब हमारी हमें अप्रिशिएट करें, हमें हमारी तारीफ करें, हमारे लिए अच्छा बोलें। तो पहले आप खुद किसी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट दीजिए, किसी के लिए अच्छा सोचिए, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, सिंपल। चलो अभी सुनते हैं एक शानदार गाना और उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत। आप कहीं मत जाना, यूँ ही मुस्कुराते रहना।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है 10:56। जी हाँ, 10:56 हो गए हैं, नहीं 56 नहीं हुए, 46 हुए हैं, सॉरी। कभी कभी ना हम इतना ज्यादा खुश होते हैं कि एक्साइटमेंट में थोड़ा सा हो जाता है, बट हाँ हम बता देते हैं आपको कि ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने जो सुना था ना, इस जंगल में हम दो शेर, हाँ इमली खट्टी मीठे बेर। और इस ट्रैक की जो रिक्वेस्ट हमें भेजी थी ना आरजे रीना जी ने भेजी थी, तो मैंने कहा चलो रीना, फ्रेंडशिप डे है तो आपके लिए भी इस डे को स्पेशल बनाते हैं। और अब वक्त हो गया है एक बहुत ही प्यारे से बर्थडे विश का। जी हाँ, आज हमारे बहुत ही खास रेडियो लिसनर अर्पित वर्मा जी का बर्थडे है। अर्पित भैया, आपको हमारी तरफ से एंड आरजे खुशी और हमारी पूरी एफएम फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार तो भैया बर्थडे अपना जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जापान में कर रहे हैं, जाकर जापान की खूबसूरत वादियों में।

इससे खूबसूरत सेलिब्रेशन और क्या होगा। खूब एंजॉय कीजिए, खूब सारी मेमोरीज बनाइए और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अर्पित भैया आपको। और एक प्यार से गाना सुनवाते हैं। इतना खूबसूरत सा दिन है और पता है दोस्तों, जब अपना जन्मदिन होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि हमें हर तरफ से बेस्ट विशेज आती हैं, सब जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग से अनमोल तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसों के तोहफे तो कुछ समय चलते हैं लेकिन ब्लेसिंग्स हमेशा हमें आगे लाइफ में बढ़ाती है। एंड ब्लेसिंग्स हमेशा साथ होती हैं, दुआएं होनी चाहिए और मम्मा पापा की तो हमेशा ब्लेसिंग्स होती ही हैं, ऑलवेज प्रभु की भी होती हैं। और जब प्यार से दोस्त बर्थडे विश करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए भैया जी को सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो पचासो हजार, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अर्पित भैया। चलो सुनते हैं ये गाना, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे, लौट कर आने वाले हैं हम। दोस्तों आज नेशनल सिस्टर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप अपनी बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो नटखट सी सिस्टर जो प्यार भी करती है, डांट भी लगाती है और बहुत केयर भी करती है आपकी। हाँ, कोई बाहर वाला ऐसे कुछ नहीं बोल सकता है, इतना फिर डांटेंगी ना बाहर वाले को कि चुप ही हो जाने हैं वो। तो बताइए, इतना अच्छा सा यू नो आज डे है अपने सिस्टर के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह दीजिएगा आज। ऑल इन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, आपके दिल में बसा हुआ है फिर मुरादाबाद 89.6, और जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो और ज्यादा खिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये शो चल रहा है संडे मॉर्निंग मस्ती, और ये प्यारी प्यारी सी बातें करने वाली लड़की का नाम है खुशी, जो आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ गए आप सभी प्यारे प्यारे साथियों के, एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, बट अमित वर्मा जी का मैसेज आया है, अभी मुझे मिल गया है। हिम कॉलोनी मुरादाबाद से मैसेज पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर, इतना ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग आपने विश किया है, तीन तीन रोज हमें भेजे हैं, थैंक यू। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज पहुँचाते हैं गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से, कहते हैं कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, एंड कहते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आती हैं, आप हमारा ऐसे ही मनोरंजन करती रहिए, एंड हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके जी, इतनी सारी बातें आपने लिख दी हैं, और कहते हैं कि एफएम परिवार, अच्छा ये कहते हैं एफएम परिवार के सभी दोस्तों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

लोगों से हमारी दोस्ती करवा दी है जैसा हमने सोचा भी नहीं था, और बहुत ही अच्छा लगता है फिर मुरादाबाद के जरिए हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारे दोस्त हमारे बने हैं। और कहते हैं कि एफएम मुरादाबाद ने बहुत एफएम मुरादाबाद को बहुत बहुत थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। इतने प्यारे प्यारे दोस्त देने के लिए ओके। देखिए ये आपका कहते हैं कि दिल से दिल का रिश्ता है, और जब दिल से बातें होती है ना दिल तक पहुंच जाती है तो वहीं से दोस्त

सितारों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। तो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर आपसे करेंगे गुफ्तगु। तब तक आप भी बने रहिए, कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाइए। आज तो संडे में आप आराम कर रहे होंगे ना, तो आराम कर रहे हैं, आराम करते करते रेडियो भी सुन रहे हैं आप, तो फटाफट से मैसेज भी पहुँचा दीजिएगा और सुनते हैं शानदार गाना।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना है मुरादाबाद 89.6 पर खुशी के साथ। और दोस्तों ये टाइटल ट्रैक आपने सुना एंड हम आपको बता देते हैं वक्त हुआ है 11:15। और सच में दोस्तों अपने वही होते हैं जो खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में हौसला बनकर साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि अपनापन लफ्ज़ों से होता है लेकिन मुझे लगता है कि एहसास से महसूस होता है। तो इसीलिए इस खूबसूरत एहसास को ऐसे ही बनाए रखिएगा। और यहाँ पर बहुत प्यारे आपके मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से पढ़ लेती हूँ। आज की मॉर्निंग हमारे जो लिसनर हैं वो क्या पहुँचाते हैं एंड उनके दिल की बात भी जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये कहती हैं कि संडे मॉर्निंग मस्ती में आपको सुनकर आपकी आवाज़ आपकी बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद आपका। और उसके अलावा ये कहती हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे आनंद भैया और रीना मैम एंड खुशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच लीता मैम जी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है पुनीत कुमार जी का, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सेम टू यू। और दोस्तों सावन की शुरुआत होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठाए, देवघर में बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है ताकि भक्तों को दर्शन के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए सावन का इतना पावन महीना है और कांवड़ती भी जा रहे हैं एंड जल लेने के लिए, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है और आज से ही सब तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे सोमवार का चौथा दिन है, सावन का आज चौथा दिन है संडे एंड कल मंडे है, फाइनली सावन का पहला सोमवार। तो और भी अपडेट हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए खुशी को और यूं ही मुस्कुराते रहिए। मुझे पता है आज काम में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, देखिए काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए, ठीक है। आप अभी कुछ पानी वानी पी सकते हैं एंड कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए काम तो पूरे दिन कंप्लीट नहीं होते हैं, घर में इतने काम होते हैं, सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है काम ठीक है करते रहिए लेकिन काम के साथ साथ ना अपना ध्यान भी अच्छे से रखिएगा, ठीक है। चलो सुनो एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सभी के लिए यहाँ पर मैं प्ले कर रही हूँ।

0: किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। संडे का दिन है आज और बहुत ही खूबसूरत सा तारीख है 2 अक्टूबर की। समय हुआ है 11:39। 2:11:29 हो गए हैं। जी हाँ, 11:29 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, मोहम्मद रफी साथ में किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज में। प्यारा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, एक नन्हे बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद से सुरक्षित जगह शायद ही कोई और हो, और माँ का दूध उसके लिए प्रकृति का दिया हुआ सबसे खास उपहार है। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का मतलब मकसद है लोगों को बताना कि छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है और एक माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान परिवार के सहयोग की कितनी जरूरत होती है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो पहला दूध आता है उसका रंग थोड़ा सा पीला और गाढ़ा होता है, इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही खास होता है और उसकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। बच्चे की शुरुआती 6 महीने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इस दौरान बच्चे को केवल माँ का दूध देने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। माँ को परिवार का प्यार, आराम और सपोर्ट मिलना भी उतना ही जरूरी है। घर के लोग अगर छोटे छोटे कामों में माँ का हाथ बटाएं, उसे आराम दें और उसका हौसला बढ़ाएं, तो उसके लिए ये सफर काफी आसान हो सकता है।

और बच्चे की अच्छी सेहत की शुरुआत प्यार से होती है और माँ को दिया गया आपका सपोर्ट भी उस प्यार का ही हिस्सा है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हमारे पास अगला मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जसवीर जी का मैसेज हमारे पास आया लाइन पार मंझूला से, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। सर ने हमारे हाल चाल जाने हैं तो बता देते हैं, हम बहुत अच्छे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज कार्यक्रम में आप हमें सुन रहे हैं। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। हाँ सही दोस्तों, मतलब संडे का दिन होता है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का दिन होता है, तो संडे है, इतना खूबसूरत सा दिन है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो यार, आलस को छोड़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है। टेंशन लेने से क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है टेंशन लेने से ना, और कुछ नहीं होगा, खुद को प्रॉब्लम होगी, खुद हम बीमार हो जाएंगे। तो क्या करना है, टेंशन को भेजना है पेंशन लेने, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हैप्पी रहना है लाइफ में, मुस्कुराना है, चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है पता है, आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने प्रति भी दूसरे के प्रति भी, और जो भी होगा बेस्ट होगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और आज फ्रेंडशिप डे पर स्पेशल ये ट्रैक आपने सुना एकता जी की पसंद पर। मैंने कहा चलो इतने प्यार से रिक्वेस्ट भेजी है तो कंप्लीट कर ही देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुशी चाहती है कि हमारे सभी श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और वो यूं ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप सब खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:50 और कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जिसे निभाने के लिए रोज मिलना जरूरी नहीं, दोस्ती वो रिश्ता है जिसे निभाने के लिए रोज मिलना जरूरी नहीं, बस दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह हमेशा बची रहनी चाहिए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों के नाम, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने रहने के लिए दिल से थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों कहते हैं दोस्त किस्मत से मिलते हैं और मुझे लगता है मेरी किस्मत सच में बहुत खूबसूरत है क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ। 2 अगस्त की तारीख है, संडे का दिन है, शो का नाम मॉर्निंग संडे मॉर्निंग मस्ती है। जी हाँ, संडे का दिन थोड़ा सा मस्ती करने का होता है, थोड़ा रेस्ट करने का होता है, खुद को टाइम देने का होता है। हाँ, एंड ये कहती है हाय दी केम छो मजा माँ। हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहती है मैं अफरोज फातिमा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे और मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवाएंगे ये गाना, थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास पूजा जी का आया है विकास नगर से। ये कहती हैं हेलो मैम, कैसे हैं आप, हैप्पी फ्रेंडशिप डे खुशी मैम आपको, क्योंकि जब आप आती है ना तो लगता है कि हाँ कोई अपनी प्यारी सी दोस्त आ गई है और मैं बहुत ध्यान से आपको सुनती हूँ। सो स्वीट डियर, थैंक यू सो मच इतना स्वीट सा मैसेज पहुंचाने के लिए। अच्छा लगता है जब इतनी प्यारी प्यारी सी हमारी फ्रेंड हमें मैसेज पहुंचाती है। तो दोस्तों अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5 बिंदास बोल शो में, जहां पर बातें होती हैं एकदम बिंदास तरीके से, बिंदास बातें, बिंदास अपडेट आपको मिलती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो आप सुनना ना भूलिएगा, 3 से 5 करेंगे कुछ खास बात। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति एंड तब तक के लिए आप यूं ही खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, हर एक मोमेंट को, हर एक टाइम को अपने स्पेशल बनाइए, क्योंकि जो आपके पास वक्त है वो बहुत स्पेशल है। और हर पल धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का, उस प्रभु का जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है एंड अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का भी। और दोस्तों मैं अब चलती हूँ, लेकिन एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आई है अमित वर्मा जी की एंड इन्होंने बहुत प्यारे गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और इसी के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभकारी में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से।
1: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़ कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़ कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा, लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्ची की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
1: जी, चलिए बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
0: तो
1: इल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
0: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजे रीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
1: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए, और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं, साथ ही 25 से 30 ग्राम

0: फाइबर रोज लेना जरूरी है जो हमें फल सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
1: वाह, अब ये सबके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है। लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
0: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
1: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
0: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
1: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
4: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
3: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
4: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
3: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
4: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
3: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
4: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
3: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितनी खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
3: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
4: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
3: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
4: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
3: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
4: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
3: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
4: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
3: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
4: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
3: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
3: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
4: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
3: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
4: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
3: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
4: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
3: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
4: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
3: श्रोताओ, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसलकर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसे दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
4: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए, इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात ये है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
3: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत से लाभ कई,
3: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ का प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
1: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
0: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना। ये
0: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्टम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
0: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
1: इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है, मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
0: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है, यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर दो दो घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
0: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
1: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
0: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकाल कर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
1: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
0: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियां हो जाती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
0: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
0: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
1: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
1: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
0: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भावी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियां, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहां बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
1: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
0: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
0: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
1: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
1: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
0: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
1: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गाँव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
1: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
0: और डिजिटलकरण क्या होता है?
1: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
0: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
0: दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों

जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत सही लाभ कहीं के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है। श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश

0: यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में है ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है, और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर।
0: ओके।
1: पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर है वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्राकृतिक के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता
0: है,
1: सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ ना करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी, तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बहते रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही,
0: तो श्रोताओं छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी ना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है।

0: गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं और दोस्तों तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं और ये है ध्वनि प्रदूषण जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: का स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.airindia.com newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
5: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैराशॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 2:30:17 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कुछ नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेंगे। ऐसे ही एक शायर थे जिनके अल्फाज सिर्फ गीत नहीं थे, बल्कि दिल की धड़कन बनकर करोड़ों लोगों की जुबान पर बन गए, बस गए। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है महान गीतकार, उर्दू शायर और फिल्मी गीतों के बेमिसाल रचनाकार शकील बदायूनी जी को। दोस्तों, शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। बचपन से ही उन्हें उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी का अच्छा ज्ञान मिला। शकील बदायूनी का असली नाम शकील अहमद था। बदायूं शहर से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ बदायूनी जोड़ लिया और आगे चलकर उर्दू शायरी और हिंदी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। और भी बातें करेंगे शकील साहब की, लेकिन पहले सुन लेते हैं शकील साहब का लिखा गीत। दोस्तों, आपको बता दें, जब ये गीत रिलीज हुआ तो
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार बहनों, मैं हूँ आपके साथ आरजे रीना। और आज हमारे लिए ना एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं महिला मंच, जहाँ पर हम खाने पीने की बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए शो है, बल्कि पुरुष भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी के लाइफ में ना, यानी कि खाने पीने के लेकर बहुत सी दिमाग में बातें चलती रहती है कि आखिरकार इस गर्मी के मौसम में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें आराम मिले, बॉडी को ठंडक मिले और हम भी आराम से रह पाए। और ऐसी ढेर सारी आपको टिप्स बताते रहेंगे। बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट, आपका अपना फेवरेट सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है और मैं हूं आपकी सहेली आरजे रीना और आप शो सुन रहे हैं महिला मंच, जिसमें हम महिलाओं के खाने पीने के बारे में बातें करेंगे। अक्सर क्या होता है ना, महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, बच्चों और घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो सबसे आखिरी में खुद को रखती है। कभी जल्दी में खाना छोड़ दिया, कभी ठंडा खाना खा लिया और कभी पूरा दिन चाय बिस्किट पर ही निकाल दिया। लेकिन याद रखिए, अगर घर की महिला स्वस्थ रहेगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे महिलाओं को रोज अपने खाने पीने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और घरेलू खाने भी बड़े मजेदार होते हैं, बड़े पौष्टिक होते हैं, जिनसे हमें एकदम भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है।

एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत हो गई हो सखियों, और आप सुन रहे हैं महिला मंच, यानी कि महिलाओं के खाने पीने के बारे में हम बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद सबसे जरूरी है कि शरीर को पानी मिले। एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इससे शरीर की सफाई होती है और पाचन भी अच्छा रहता है। इसके बाद नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नाश्ते में आप ये चीजें ले सकती हैं, दलिया, पोहा, पराठा दही के साथ, अंकुरित दालें, फल जैसे केला, सेब या पपीता। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिले। याद रखिए, खाली पेट ज्यादा देर तक रहने से कमजोरी, चक्कर और थकान हो सकती है। तो सुबह का नाश्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भी बातें करेंगे, बस आरजू रीना के साथ बने रहिए इस महिला मंच शो में।

हां जी, एक बार और स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो, यानी कि महिलाओं के खाने पीने की बातें लेकर हम आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गए हैं। तो दोपहर का खाना संतुलित होना चाहिए, यानी उसमें हर तरह का पोषण होना चाहिए। थाली में कोशिश करें कि ये चीजें जरूर हो, दाल या राजमा, हरी सब्जी, रोटी चावल, सलाद, दही। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी और तोरई शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। कई महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, इसीलिए हरी सब्जियां और दालें खाना बहुत जरूरी है। और बहनों, खाना ही नहीं बल्कि पानी पीना भी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर मौसम गर्म हो तो पानी और ज्यादा पिए। बीच बीच में हल्का नाश्ता भी लिया जा सकता है, जैसे फल, मूंगफली, भुना चना, नारियल पानी। ये चीजें शरीर को ताकत देती हैं और थकान कम करती हैं। तो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं 3 बजे आपसे मिलने वाली हूँ। और देखिए, हम अपने वादे के अनुसार आ गए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, वक्त हुआ है अभी 3:06 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और शो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी का खास बिंदास फूल, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं खुशी के साथ। और एवरीवन, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज बात होगी उस रिश्ते की जो खून का रिश्ता नहीं होता फिर भी दिल के सबसे करीब होता है। जी हाँ दोस्तों, आज है फ्रेंडशिप डे स्पेशल। एंड कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते और कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं। दोस्तों, दोस्ती उन्हीं में से एक खूबसूरत रिश्ता है। और आप भी कुछ अपने दोस्तों के लिए कहना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप मुझे कह सकते हैं, मतलब अपने थॉट मेरे तक शेयर कर सकते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं लेकिन दोस्ती किस्मत वालों को मिलती है। हम बहुत लकी हैं कि आप सब इतने प्यारे प्यारे साथी हमारे मित्र हैं और खुशी को मिले हैं। एवरीवन, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में प्राची भी है जो बहुत मुस्कुरा रही है, तो आइए उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हाय प्राची, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
1: वेरी गुड आफ्टरनून खुशी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपने साथ जोड़ा और आपको बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: सेम टू यू, वो तो हमने सुबह एक दूसरे को विश किया है लेकिन अगेन अपने श्रोताओं को भी विश कर देते हैं
1: और हमारी सारी लिसनर्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और खुशी, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि खुशी ने आज वही उसी तरह की ड्रेस पहनी है जिस तरह की मैंने पहनी है।
0: आज फ्रेंडशिप डे है, कुछ तो स्पेशल करना चाहिए ना अपने दोस्तों के लिए।
1: आपको पता है फ्रेंड्स, खुशी ने स्पेशली उनको स्पेशली बाद में कोई और ड्रेस पहन रखी थी, कोई और कपड़े पहन रखे थे, पर फिर आज की स्पेशली जो मेरे कलर पैटर्न से मैच हो रहा है वैसे सेम पैटर्न में कपड़े पहने खुशी ने, तो अभी हम बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं।
0: हाँ, बहुत सारा फन करने वाले
1: हैं। डोंट वरी, हम शो में भी बहुत मस्ती फन करने वाले हैं।
0: या बिंदास होकर चिल करना है यार, क्यों इतनी टेंशन लेनी है?
1: आज फ्रेंडशिप डे है तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं अपना स्पेशल फ्रेंडशिप मोमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ।
0: हाँ, उसके लिए आपको कहाँ पर मैसेज करना है ये तो मैं बता देती हूँ, आप टेंशन ना लो एवरीवन, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है तभी तो आपकी दिल की बातें हम तक पहुँच पाएंगी ना। उसके लिए देखिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 9837896 98 300 96 98 800 96। इस क्यूट से नंबर पे आपको क्यूट सा मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड्स के लिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, आप भेजिए और हमें बताइए अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम।
0: हाँ, और हम आपका मैसेज ऑन ईयर पढ़ेंगे। आपके शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल की बातें आपके फ्रेंड्स भी सुन लें, वो भी जान लें जो आप उनसे ना कह पाए हो। कभी कभी ऐसा होता है ना प्राची कि हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं अपने दोस्त से, होता है कुछ, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है। अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आपने मैसेज नहीं दिया है एंड आपको लगता है कि आज मुझे फ्रेंडशिप डे पर तो अपने दोस्त को ये बोलना ही है, तो ये बहुत अच्छा यू नो चांस है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल आजी खुशी, और ये वो दिन है आज हमारी लाइफ में कि हम उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्त हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनसे दोस्ती काफी पुरानी होती है, जैसे समय बीतता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, पर कुछ दोस्त होते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो आज स्पेशल डे वो उस इम्पोर्टेंस को याद दिलाते हैं और हम आज उन्हें थैंक्स बोल सकते हैं और उन्हें उनकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में ये हम उन्हें एक बार फिर से फील करा सकते हैं।
0: एग्जैक्टली राइट। तो देखो दोस्तों, ये हमारी बातचीत तो चलती रहेगी एंड अभी जब हमें हमारे सामने माइक आ जाता है ना तो हम रुकने का नाम नहीं लेते हैं, बट रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ चुनिंदा नगमे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, तो चलिए सुनवा देते हैं उसकी।

बाद अगेन आएंगे, फिर करेंगे मस्ती धमाल, कुछ बातें आपसे भी जानेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड की बातें, ठीक है प्राची? ठीक है, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ है ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो चलिए दोस्तों अभी मुलाकात करते हैं आपसे कुछ खूबसूरत गानों के उस पार।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, शो का नाम है बिंदास बोल. आपको बिंदास होकर बातें करनी है. और अभी आपने ये ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता, टाइटल ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा. और सच में दोस्तों, दिल का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है. जब हम किसी से दिल से रिश्ता जोड़ते हैं तो रिश्ता एक प्योर सोल होता है. उसमें कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं. एंड और वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलता है. तो बाकी हम प्राची से जानेंगे क्योंकि वो बहुत स्वीट है एंड क्यूट भी बहुत है. तो प्राची, आप क्या कहना चाहेंगे दिल के रिश्ते?
1: थैंक यू खुशी, आप सबकी बहुत तारीफ करती हूँ क्योंकि आप बहुत खुद क्यूट हो, क्योंकि आप बहुत क्यूट और बहुत स्वीट हो.
0: थैंक यू.
2: और दिल का रिश्ता, सच में दिल का रिश्ता बहुत प्यारा होता है क्योंकि इस दिल के रिश्ते को हमने बनाया होता है ना.
0: या
2: और ये दिल का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें ना कोई बर्डन, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक रिश्ता जैसे हम जीते हैं, जो एक्सीडेंट जो हमें लाइफ में एक्सीडेंटली मिलता है ना दोस्तों, वो हमें एक्सीडेंटली मिलता है. हमने ना उसे बनाया है, अचानक से कोई फ्रेंड हमारा बन जाता है, किसी का नेचर हमें अच्छा लगता है तो बस फिर उसके करीब हम चले जाते हैं.
0: या देखो ना, हम किसी को जानते भी नहीं है, रैंडमली कोई इंसान मिल जाता है और वो इतना अच्छा लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, राइट?
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंडशिप, इसलिए फ्रेंडशिप का रिश्ता बहुत खास होता है. ऐसे तो दुनिया में हमारे बहुत रिश्ते होते हैं.
0: या
2: कुछ हमें जन्म से मिले होते हैं, पर जो फ्रेंडशिप का रिश्ता होता है उसे हम खुद बनाते हैं. और उसकी बात कुछ और ही होती है.
0: Yes.
2: उसे जीना, उसके साथ जिंदगी जीना सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है.
0: तो कैसा लग रहा है खुशी के साथ बात करके बैठकर? बताओ, आप तो टाइम स्पेंड करते हो, नो डाउट.
2: मुझे तो खुशी के साथ बहुत अच्छा.
0: वो बताओ, वो मोमेंट बताओ प्राची, आप जब आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिली थी, तब कैसा फील हुआ था आपको?
2: मैं आपको यही मोमेंट अभी बताने वाली थी.
0: लो, हमारे देखो थॉट भी कितने मैच करते हैं. मैं भी यही सोच रही थी और आपने भी यही सोचा.
2: और हाँ, और जब मैं खुशी से पहली बार मिली थी तो खुशी से जो मिलने की बात थी ना, मैं खुशी का नेचर देख के समझ गई थी कि खुशी का नेचर सबसे अच्छा है. इसलिए हमारी खुशी से एकदम का नंबर भी मांग लिया था. खुशी, आपका नंबर क्या
0: है? या और मैंने दे दिया था. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग बातचीत करते रहेंगे कंटिन्यू, लेकिन आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं. फटाफट से व्हाट्सएप कीजिएगा नंबर 9837896896. मिलते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर.

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये सुना शानदार सा गाना। देखिए दोस्तों, आज स्पेशली हमारा जो शो है वो है फ्रेंडशिप डे स्पेशल, क्योंकि आज नेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमने कहा इतने प्यारे प्यारे हमारे दोस्त हैं, तो क्यों ना आज इस पर हम अपना स्पेशल शो कर लेते हैं। और मेरे साथ में प्राची भी है यहाँ पर, तो प्राची से जानते हैं उनकी स्कूल वाली फ्रेंड्स के बारे में। वो कुछ चर्चाएं भी कर रही थी हमसे, कुछ डिस्कस कर रही थी उनके बारे। तो मैंने कहा देखो मैं नहीं सुनूंगी आपकी कहानी, हमारे सारे श्रोता सुनेंगे मिलकर, तो ज्यादा बेस्ट है ना। देखो मैं अकेली सुनती, तो मैंने सोचा अपने श्रोताओं को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, ताकि वो भी सुने। और ऐसी दोस्ती आपकी भी हो सकती है, आपको भी वो बचपन वाले पल याद आ जाएंगे फिर से। तो चलो प्राची जी से फिर से कनेक्ट करते हैं। हाय प्राची।
1: हाय आजी खुशी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर से एक मौका दिया कि अपने बचपन के फ्लैशबैक में हम जा सके।
0: या
1: तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जब वो जो बचपन की दोस्ती होती है ना, स्पेशली वो जब स्कूल वाली दोस्ती, वो बहुत खास होती है। वो बैठे रहना और दोस्तों के साथ बातें करना,
0: और क्लास में टीचर भी आ जाए तो चुपके चुपके से बातें करना।
1: और स्पेशली क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे ये वाली बात और बतानी थी मुझे, अरे ये तो रह गई, ये वाली बात रह गई। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम सबके साथ होते हैं। और पता नहीं, मैं अब सोचती हूँ बैठ के कि पता नहीं वो कौन सी बातें थी जो पूरे दिन भर हम करते रहते थे
0: फिर भी कम्प्लीट नहीं होती थी।
1: करते करते हम स्कूल के गेट तक आ जाते थे, और फिर भी हम बाय करते करते बोलते थे बाकी तो कल बता। तो आप सच में, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि पता नहीं हमारी कितनी बातें थी, और हमारा कुछ ज्यादा बड़ा वो भी नहीं था उस टाइम, तो ना यूट्यूब था ना फेसबुक था ना कुछ था, तो ज्यादा कुछ बातें भी नहीं थी,
0: सोशल मीडिया का जमाना उस टाइम पर नहीं था।
1: फिर भी हम लोग, हमारे पास इतनी सारी बातें थी करने के लिए कि वो अधूरी रह जाती थी। पूरा 8 से लेके हम 1-2 बजे तक स्कूल होता था, फिर भी अधूरी रह जाती थी।
0: अच्छा, तो वो फ्रेंड अभी भी आपके साथ में है, क्योंकि बचपन वाली दोस्ती बहुत कम होती है जो हमारे बड़े होने तक, कॉलेज तक साथ चलती है। कॉलेज से आगे लाइफ में जब हम जिंदगी में और ज़्यादा बढ़ते हैं, इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर वो स्टडी हो एंड या फिर वो शादी वाली लाइफ हो, तो वो बचपन वाली दोस्ती रहती है, अभी भी है।
1: हाँ, जैसे मतलब सोशल मीडिया है तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए
0: कनेक्ट हैं,
1: पर फिर भी वो जो स्कूल जाके दोस्तों से मिलना और बातें करना, वो चीज अब तो नहीं है। और वो चीज को हम ज्यादातर मिस करते हैं। अब तो अब हम लोग बिजी हो गए, अपने अपने काम करते हैं, एक दूसरे से रोज मिलना नहीं होता।
0: हाँ।
1: पर वो जो रोज मिलना होता था दोस्तों से, वो
0: और वो वाली बातें आप भूल गई क्या कि अच्छा

0: ये बता अपना टिफिन पहले तो खोल, क्या लेकर आई है? नहीं नहीं तुम पहले खोलो, पहले चेक करके बताओ तुम क्या लेकर आई। अरे खुशबू आ रही है चार और पराठे की।
1: और टिफिन तो वही मन करता था लंच से पहले फिनिश कर लो हमेशा।
0: हाँ वो एक बार मैंने भी किया ऐसा,
1: मेरी जो दोस्त होती थी वो हमेशा मेरा लंच खा ली रहती।
0: अच्छा वैसे पता है तुम्हारे घर में रोटियां बड़ी सॉफ्ट और बहुत छोटी बनती हैं। तुम एक बार टिफिन लेकर आए थे ना, तो मेरे साथ शेयर किया था आपने, तो मैंने खाई, मैंने कहा भैया ये बच्चों वाली रोटी प्राची खाती है तभी ये इतनी पतली है। मैं बोलूँ इसकी पतले होने का राज क्या है, तो पतले होने का राज यही है। हाँ
1: हाँ विशेष रोटी तो मतलब छोटी सी बनती है।
0: हाँ।
1: पर बड़ा ही सच में बहुत मजा आता था जब हम दोस्तों से
0: बातचीत करते थे, स्कूल जाना रेगुलर और कॉल करके बोलना कि अगर तुम आओगी तो मैं भी आऊंगी वरना मैं नहीं आऊंगी आज स्कूल।
1: और वो सर्दियों में भी बहुत स्पेशल टाइम होता था, है ना,
0: विंटर्स में। या
1: मेरा स्कूल तो बहुत दूर था, तो जब मैं अपने स्कूल से आती थी तो स्कूल से जब मैं अपने घर से स्कूल आती थी तो क्या होता था, मेरी फ्रेंड्स जो होती थी वो मुझे अपना वो जो होता है ना ग्लव्स हम एक दूसरे को पहना देते हैं।
0: हाँ।
1: तो बहुत केयरिंग, बहुत फन, बहुत मजा आता था।
0: अरे वाह, चलो और बातें अभी लौट कर आएंगे तब करेंगे एवरीवन, क्योंकि सारी बातें अभी कर लेंगे तो फिर बाकी के लिए क्या करेंगे। अभी अपनी बातें हम सब शेयर कर सकते हैं, आपकी वो बेस्ट फ्रेंड, वो लाइक स्कूल टाइम वाली दोस्त जो अभी भी आपको याद है, जब आप कभी अकेले में बैठे होते हैं तो वो पल याद करते हो वो, या फिर किसी बच्चे को खेलते हुए रोड पर देखते हैं या स्कूल जाते हुए देखते हैं तो वो अपना बचपन हमें याद आता कि हम भी ऐसे जाया करते थे, बातें करते इतने मशरूफ हो जाते थे कि पता नहीं चलता था कि सामने गाड़ी आ रही है या बाइक आ रही है, मतलब साइकिल आ रही है। तो वो चीज़ें, वो पल, वो मोमेंट अगर आज आप स्पेशली फ्रेंडशिप डे पर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलो आप इस सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा।

0: एचआर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिंदास फूल शो में। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में प्राची भी है यहाँ पर। एंड प्राची बताइए, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रेंडशिप डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं हम, लेकिन नेक्स्ट आज और स्पेशल डे है जो बहुत नटखट से भी होती हैं, बहुत डांट भी लगाती हैं, बहुत केयर भी करती हैं और बहुत प्यार भी करती हैं, लव भी करती हैं। तो बताइएगा कौन है वो जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, कौन सा आज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं?
1: जी जी, आप जिक्र कर रही है सिस्टर्स का।
0: या
1: जो हमारी सिस्टर्स होती हैं उनके साथ हमारा ऐसे ही तो बॉन्ड होता है ना। हम उनसे बातें करते हैं, अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारी सिस्टर मुझे लगता है एक ऐसी पर्सन होती है लाइफ में जिससे हमारे सारे सीक्रेट्स ऑलमोस्ट पता होते हैं। और सिस्टर्स के पास ही हमें लगता है कि हमारे सीक्रेट सबसे ज्यादा सेफ है।
0: या एग्जैक्टली।
1: और ऐसा भी होता है सिस्टर के साथ फाइट भी हमारी होती है, आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही रहते हैं, पर वो जो सबसे ज्यादा जो सेफ प्लेस रखता है हमें हमेशा, कोई भी सीक्रेट हो, लाइक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो जो हम हर किसी से नहीं कह सकते, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पर सिस्टर से आप हम भरोसा कर सकते हैं। तो सिस्टर का होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।
0: तो आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिस्टर डे और इन्होंने इतनी सारी बातें बोल दी हैं अपने सिस्टर के बारे में कि सिस्टर ऐसी होती हैं, सिस्टर वैसी होती हैं, बहुत केयर भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और थोड़ा सा नुक झुक भी होता है, लेकिन वो रिश्ता बहुत प्यारा होता है, है ना? तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले बहुत सारे, लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम अभी बता देते हैं आपको, 3:54 हो गए हैं, 3:54 राइट नाउ स्टूडियो की में टाइमिंग हो गई है। और अभी कुछ जानेंगे प्राची की सिस्टर के बारे में भी, एंड मैं भी कुछ बताने वाली हूँ कि मेरे जो भाई हैं वो बहुत शरारती हैं। तो क्या शरारती करते हैं वो मैं सब बताऊंगी आपको, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए राखी आने वाली है, है ना, राखी फेस्टिवल आने वाला है। और मैंने कहा अपने भाई को कि भैया इस बार मुझे ना कुछ अलग चाहिए, कुछ अच्छा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि एवरी डे तो आप मुझे पैसे देते हो, लेकिन इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आईफोन। मैंने रिक्वेस्ट की है अपने छोटे ब्रदर से, छोटे भैया कहते हैं दीदी पहले कमाना तो दो, तभी तो मैं आईफोन दिलाऊंगा ना, उसके लिए मुझे और बड़ा होना पड़ेगा, अभी स्टडी कंप्लीट करनी होगी। तो उन्होंने कहा डिमांड भी बहन ऐसी ऐसी करती है जो मैं दे नहीं सकता हूँ अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम मुझे कुछ मत दो, बस मेरे साथ रहो, ये मेरे लिए सबसे अनमोल है, सबसे प्यारा है। कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ। अच्छा बहनें ऐसी होती है ना नटखट सी।
1: हाँ।
0: अच्छा आप कभी अपनी बड़ी बहन से कुछ डिमांड करती हो? बताओ बताओ बताओ। नो
1: नहीं, अच्छा मैं तो कुछ डिमांड नहीं।
0: ओके, कभी उन्होंने कुछ दिया है बिना बोले ही?
1: ऐसा तो कुछ नहीं दिया, पर हाँ जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीज होती है वो दे देती है।
0: ओके हाँ वो दे देती है। चलो दोस्तों अभी बात करेंगे बहुत सारी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक, क्योंकि ये जो हमारा शो है बिंदास बोल और बातें होती हैं दिल से दिल तक।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: देखिए दोस्तों, हम भी आपके और चले आए, हमसे रुका नहीं गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, 4:07 हो गए, अपने दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं। और एवरीवन, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में प्राची भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आज का संडे शो। मैंने कहा चलो आप भी आ जाओ, इवनिंग को अपने श्रोताओं की, अपने लिसनर्स की थोड़ा सा फन, थोड़ा मस्ती एंड स्पेशल बनाते हैं। संडे एक ऐसी शाम है, लाइक मुझे लगता है कि सबको बेसब्री से इंतजार होता है संडे का, राइट?
1: बिल्कुल खुशी जी,
0: संडे का मुझे, आपको, हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। संडे वो दिन जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, कहीं घूमने के लिए हम जाते हैं, रेस्ट करने का टाइम होता है, अपने लिए वक्त निकालते हैं। और किसी किसी के लिए तो संडे ऐसा भी होता है प्राची कि बहुत सारे काम होते हैं, जो पेंडिंग काम होते हैं, जो डेज में नहीं हो पाते हैं, जो वर्किंग होते हैं स्पेशली, तो उनके लिए संडे भी बहुत बिजी होता है किसी किसी के लिए।
1: तो खुशी, आपको नहीं लगता कि हम बहुत लकी हैं इस सेंस में कि हमें जो अच्छा लगता है वो हमें मिलते हैं?
0: या मैं
1: से बात करना,
0: मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, स्पेशली मैं संडे को अपने श्रोताओं के साथ कनेक्टिविटी बनाती हूँ।
1: सबसे ज्यादा रिलैक्स और सबसे ज्यादा हमें अच्छा तो यही फील होता है।
0: हाँ, और कोई तो होना चाहिए ना जो हमारे संडे को स्पेशल बनाए।
1: आप लोग हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको सुनना, आपकी बातें सुनना, क्या रे रही है हमारी दोपहर, हमारी मॉर्निंग, हमारी
0: इवनिंग बिंदास हो जाती है। और अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टर डे पर, राइट, नेशनल सिस्टर डे पर, तो हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। और हाँ, तो प्राची बताइएगा क्या पहुंचा है हमारे प्यारे प्यारे डियर लिसनर्स ने, जरा बताइएगा उनके बारे में।
1: हाँ, हमारी लिसनर्स है नेहा रामपुर से, बताती है।
0: ओ, नेहा रामपुर से, अरे वाह, हाय नेहा, वेलकम है आपका।
1: वो बताती है कि जब हम दो सिस्टर्स टीवी का रिमोट लेकर रोज लड़ते थे ना, तो अगर कोई मुझे डांट देता था, तो वो सबसे पहले मेरे साथ खड़ी होती थी।
0: अच्छा, जैसे घर में होता है ना, लाइक मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में होता है, सिंपल सी बात है, जब हम अपना फेवरेट सीरियल देखते हैं और उधर से भाई आता है या फिर बहन आती है, चल रिमोट दे मेरे को देखना है, अब मेरी बारी है, तब वो चीजें होती हैं, तो दूसरी बहन साथ में खड़ी रहती है, ओए मेरी बहन को कुछ मत कहना।
1: हाँ, आप पता है खुशी, आपको क्या होता है कि जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, वो मतलब हमारी एज की होती है, तो वो सबसे ज्यादा हमें अंडरस्टैंड करती है, हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है, मतलब क्या चीज हम चाहते हैं और हमें क्यों चाहिए, तो जो सिस्टर्स होती है उनका इस बारे में काफी सपोर्ट मिलता है। और जब सब लोग फैमिली में जो और लोग होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते, तो सबसे पहले हमारे साथ हमारी सिस्टर्स खड़ी होती है ना।
0: यस, सिस्टर भी खड़ी होती हैं और फिर मम्मा भी बातों को समझती हैं, मुझे लगता है हमारी लाइफ में ना सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारी मम्मा एंड हमारी सिस्टर होती हैं, जो हमें समझती हैं, हर सिचुएशन में हमारा साथ देती हैं, जहां हमें भी लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर हमारी सिस्टर हमें मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं कि नहीं तुम कर पाओगी, तुम बेस्ट करोगे, तब हमें हौसला और ज़्यादा मिलता है कि जब हमारे फैमिली मेम्बर्स खुद हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। या
1: हाँ बिल्कुल, तो ये सिस्टर्स का रिश्ता, फ्रेंड्स का रिश्ता, ये सब सारे रिश्ते
0: बहुत खूबसूरत होते हैं,
1: बहुत
0: स्पेशल होते हैं। और हम तो सच में बहुत लकी हैं कि हमें इतने प्यारे प्यारे हमारे लिसनर मिले हैं,
1: का रिश्ता मिले।
0: या एंड हमारे पास कुछ मैसेज भी यहाँ पर आए, अभी नेहा जी का आया था, और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शहीद शारिक अली जी, और ये कहते हैं आदाब खुशी जी, कैसी हैं आप, संडे में आपका शो बिंदास बोल सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके साथ आप सॉन्ग भी बहुत ही अच्छे प्ले कर रहे हैं।

0: है और विनास बोल भी पसंद आ रहा है। धन्यवाद आपका। तो चलिए प्राची एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ गपशप कुछ बातें एंड जो आपके दिल को छू जाएगी। और क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता है तो दिल की बातें दिल तक पहुंचनी चाहिए ना।
1: बिल्कुल पहुंचनी चाहिए।
0: प्राची अभी बोल रही थी कि मैं ना ऐसा चाहती हूँ कि मैं दिल से बोलूं, मैंने कहा आप दिल से ही बोलती हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ सुनते हैं शानदार गाने, उसकी बात करते हैं आपसे भी बातचीत। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज हमें पहुंचाइएगा कि इस समय आप कहाँ पर हैं, घर पर हैं या फिर ऑन द वे अभी कार में हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा और हाँ अपने प्यारे से क्यूट से चेहरे पर ना मुस्कुराहट भी रखिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है, जैसे हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं स्माइल। देखिए दोस्तों हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन फील तो आपको हो ही रहा होगा, है ना। तो चलिए ये प्यारा गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो का नाम क्या है बताइए प्राची?
1: बिंदास बोल।
0: हाँ जी, जहाँ पर आपको बिंदास होकर बातें करनी है एंड नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। और हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है क्योंकि कांवड़ चल रहा है, सावन का महीना है और बहुत सारे लोग जल लेने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारी कांवड़ती भी चल रहे हैं। तो मैंने देखा था, कल मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी प्रकाश नगर, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक था ना प्राची, बहुत ज़्यादा, लाइक गाड़ियाँ मतलब एक दूसरे मतलब गाड़ी निकलने का स्पेस ही नहीं था, इतनी भीड़ थी। जहाँ पे हमें 10 मिनट में हम पहुँच जाते ना, वहाँ पे हमें 30-30 मिनट वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसा मतलब यू नो माहौल हो चुका है अभी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, थोड़ी देर ही सही लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल खुशी।
0: और मुझे लगता है कि देखिए, जब हम हैप्पीनेस के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो वो सफ़र हमारा इजीली निकल जाता है। लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं, तो वही सफ़र हमें ऐसा लगता है कि यार कब जाएंगे हम, कब पहुंचेंगे। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है, मुस्कुराना है, देर से ही सही लेकिन आप पहुंच ज़रूर जाएंगे, आराम से सेफ्टी से गाड़ी चलाइएगा सेफली। और आप कुछ बोल रहे थे प्राची, तो बताइए, कंटिन्यू कीजिएगा।
1: हाँ खुशी, मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने देखा होगा ना, कितनी गर्मी है।
0: हाँ अभी भी
1: मौसम
0: राइट,
1: हाँ बारिश तो हो रही है पर फिर भी बीच बीच में जो गर्मी,
0: आज भी कितनी गर्मी है पता है। हाँ, ना
1: तो जो गर्मी बीच बीच में पड़ती है तो सच में हम लोग कितने परेशान और बेचैन हो जाते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। पर कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, और तो ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कि हाँ हमने कुछ ना कुछ, हर कोई जो भी काम करता है किसी ना किसी उसी ना किसी चीज़ के लिए काम, मतलब अर्निंग के लिए तो काम करते ही है, पर साथ ही साथ जो मेहनत वो कर रहे हैं है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो जो लोग का काम, मैं अभी अभी बाहर गई थी तो मैंने देखा था कि कुछ लोग हमारे जो राजमिस्त्री लोग होते हैं
0: जो हमारे सपनों का आशियाना बनाते हैं।
1: हाँ तो वो जो काम कर रही थी, इतनी मेहनत में पसीने आ रहे थे, तो ये तो हम ऐसे लोगों को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए
0: बिल्कुल। और उन्हें समय समय पर पानी चाय वगैरह सब मालूम करना चाहिए, मालूम नहीं करना चाहिए, पिलाना भी चाहिए। और हमारे पास कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैसेज आए, हेलो मैम नमस्ते यादव, वाजिद जी का मैसेज हमारे पास आया, वाजिद अली जी का, ये गोविंदपुर से मैसेज अपना पहुँचाते, कहते हैं आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, और मुझे भी, मैं भी लाइव आपके शो को सुन रहा हूँ एंड इन्होंने बोला है कि हम काम करते करते आपका शो सुन रहे हैं, हम भी मिस्त्री हैं। ओके, तो ये भी सपनों की आशियाना बनाते हैं सर, इन्होंने अपना मैसेज पहुँचाया है। देखिए कितनी मोहब्बत है रेडियो से, काम करते करते सर ने मैसेज पहुँचा दिया है अपना, तो बताइएगा प्राची, अच्छा लगता है ना, देखिए दिल से दिल का रिश्ता है, हम यहाँ से कुछ बात करते हैं और हमारे श्रोता वहाँ से अपने दिलों की बात हम तक पहुँचाते हैं,
1: अपने दिल की मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं।
0: और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया, हेलो मैम आदाब, मेरा नाम, इन्होंने दानिश बोला है, दानिश खान जी का मैसेज रामपुर से आया है, नेहा जी का भी आया था, दानिश जी का भी आया है, कहते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी दोस्तों को और सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कहते हैं खुशी मैम आपका शो बहुत ही अच्छा चल रहा है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, यही तो मोहब्बत है जो आपको खींच कर ले आती है वही साइड। हाँ उसके अलावा एक और मैसेज यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं प्राची कहाँ से, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी, दोस्ती पर दो लाइनें हैं कि चाय में शक्कर ना हो तो पीने में क्या मज़ा, चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मज़ा, और जिंदगी में दोस्त ना हो तो जीने का क्या मज़ा। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्लैपिंग आपके लिए। और ये कहते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल लिसनर्स और फ्रेंड्स, एंड कहते हैं कि मैम आप गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा है, जिन्हें आपने नाम पढ़ दिया है कि हमने इनका नाम नहीं नज़र आ रहा है हमें, नाम तो इनका मुझे नहीं शो कर रहा है अभी, लेकिन आपने जो मैसेज हमें पहुँचाया है प्लीज़ अपना नाम भी बताइएगा, अच्छा लगता है जब हम नाम के साथ मैसेज पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हाँ कोई अपना सा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्राची कि जब हम अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं ना, तो वो हमारे नाम के साथ अगर रीड होती हैं, नाम के साथ जब बोली जाती हैं, तो अपनापन सा लगता है ना। देखिए प्राची भी गुमसुम सी हो गई है, तो चलो कुछ गाने सुनते हैं, उसके बाद फिर से बातचीत करेंगे आपके साथ। आप बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ, रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाती रहिए,
0: हाँ जी, और मुस्कुराते भी रहिए हमारी तरह।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हमारी सबकी नैया राम की भरोसे ही है, और जब हम पूरी मेहनत से कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें राम जी नैया हमारी पार लगा ही देते हैं। क्यों प्राची? और देखिए प्राची भी कह रही,
1: क्योंकि हम सबकी भरोसा नैया राम की भरोसे है, गॉड की,
0: हम सबकी नैया या
1: तो गॉड जो होते हैं ना, जब हमारे साथ रहते हैं, है ना, हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें गॉड से मिलती है। और मेरी लाइफ में तो मेरी अभी तक जितनी भी सक्सेस है, उसका मुझे सच में कोई लगता है ना, किसी को क्रेडिट देना चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे अगर खुद से भी ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए तो वो राम जी को देना चाहिए, गॉड को देना चाहिए, कि लाइफ में ऐसे ऐसे टर्न आए जहाँ मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है बहुत अनएक्सपेक्टेडली। और वो जो भी डिसीजंस मैंने बनाए, मुझे अभी तक अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ये अब तक की बेस्ट डिसीजन बनाए, और वो सारी चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि गॉड की इसमें भगवान जी का बहुत साथ रहे, तभी इतने
0: उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं।
1: मुझे लगता है शायद उसमें मेरा कुछ ऐसा कुछ खास रोल नहीं था।
0: वो एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन है ना, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
1: करती हूँ तुम घर में। ये जब आप मुझे भजन बता रही है, इस भजन को मैं बहुत सुनती हूँ और बहुत गाती भी हूँ, क्योंकि ऐसे ही लगता है कि करती हूँ सब कन्हैया बस मेरा नाम
0: हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं भी वो फील करती हूँ,
1: आप ही हमारे थ्रू वो चीजें करवाते हो।
0: या तो देखो, हाँ अभी टाइम हुआ है 4:52, 4:52 हो चुके हैं, तो बाकी आप क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंडशिप डे स्पेशल, अपने जो हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप प्राची?
1: मैं मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहिए, और अपनी अगर आप और अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, उनके लिए टाइम निकालिए। कोई स्पेशल डे अपना, जैसे आपका बर्थडे है, तो उस पर उस दिन आप अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अपने उस बर्थडे प्लान करिए कि आप अपने बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और दोस्तों, मेरा ये एक ड्रीम विश बन गई है अब, कि मैं ये जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूं,
0: या
1: क्योंकि अगर उनकी प्रेजेंस होगी और मैं बर्थडे मेरा बर्थडे होगा, केक कटिंग होगी, सच में मुझे पता है वो मेरा दिन सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली है।
0: अच्छा, तो ये बताओ बर्थडे आपका कब है? कब है आपका जन्मदिन?
1: 25 अप्रैल है, और मेरी विश है कि मेरी सारी स्कूल फ्रेंड्स मिलके एक बार मुझे मेरे साथ केक कटिंग करे दोबारा से।
0: शायद वो सुन भी रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, है ना?
1: और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड और वो मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स है, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगी, नैन्सी, पारसमणि, सुनैना, रुबीना।
0: हाँ, सुनैना से हमें कुछ है कहना, नाम कितना प्यारा है, सुनैना, सुनिए ना, बहुत प्यारी है। ओके, आपकी तरह आप भी बहुत प्यारी हो प्राची। और हमारे पास कुछ और मैसेज आए हैं हमारे लिसनर्स के, तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ कि हमारी डियर लिसनर्स क्या पहुँचाती हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रतीक्षा का, और ये कहती है, हाय, गुड इवनिंग मैम, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आपका शो सुन रहे हैं, और प्राची मैम की बातें, वो स्कूल टाइम वाली जो बातें की हैं ना आप दोनों ने, बहुत ही अच्छी थी। और ये कह रही है कि मुझे भी वो अपने स्कूल के दिन याद आ गए, वो दिन भी क्या दिन थे।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा अपना मैसेज हमें पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने बहुत प्रतीक्षा करवा दी है। अगर आप थोड़ा और लेट करते तो फिर हम शायद नहीं पढ़ पाते आपके मैसेज, क्योंकि जाने का भी टाइम हो रहा है।
1: थैंक यू प्रतीक्षा कि आपने अपना मैसेज हमारे साथ शेयर किया।
0: या प्रतीक्षा ने थोड़ी प्रतीक्षा कराई है, चलता है, कोई बात नहीं है, बट हम नई प्रतीक्षा करवाते हैं आपको। हम एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं यहाँ पर, आज उनसे मिलना है हमें, तो अभी हम मिलने वाले हैं, गर्मा गर्म चाय से मुलाकात हमारी होने वाली है, क्योंकि हम चाय का ही इंतजार कर रहे हैं और वो आने वाली है। चाय से मुलाकात कर लेते हैं, और साथ में बिस्किट भी हो तो फिर बात ही अलग हो जाए। हाँ, तो हम अपने श्रोताओं को चाय बिस्किट तो नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन हाँ, ये प्यारा सा ट्रैक उन सभी के लिए जो इस समय हमें राइट नाउ सुन रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा एवरीवन। मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: जिंदा।
1: क्या बात है गुरु पाजी, आपने तो हमारी दिल की बातें बोल दी। आज हम ब्लैक सूट पहन कर आए और चेहरे पर भी तिल है है ना प्राची? और प्राची भी आज ब्लैक कलर का आउटफिट पहन के आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपके ड्रेस मेरे को, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। प्राची देखिए, कल सावन का फर्स्ट मंडे है और सभी को बेसब्री से इंतजार है इस पवित्र महीने के सोमवार का। एंड कल से बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो उपवास रखने वाले हैं सोमवार का। एंड कुछ ऐसे भी लिसनर हैं जो पूरे मंथ के व्रत रखते हैं सावन में, लेकिन आप व्रत रखने वाले हो कल?
2: हाँ, मैं भी व्रत रखने वाली हूँ।
1: ओके वेरी गुड, तो मैं भी कल व्रत रखने वाली हूँ। वैसे व्रत किसके लिए रखने वाली हूँ
2: जी? मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि शायद मैं नहीं रख पाऊँ कल व्रत।
1: अच्छा, लेकिन जो सावन के सोमवार है,
2: सोमवार है, उसमें पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ, पूजा अर्चना करनी चाहिए।
2: शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो मन कितना रिलैक्स होता है ना।
1: हाँ, मन
2: ऐसा लगता है जैसे शिव जी को हमने सारे दुख अर्पण कर दिए और प्रभु सारे दुखों का समाधान करेंगे।
1: या और जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है,
2: रिलैक्स होते हैं ना, वैसा लगता है सारी टेंशन
1: और जो पीस होता है
2: हमने प्रभु को दे दिया है, वही नैया पार लगाएंगे हमारी।
1: अभी हमने सुना भी था ना कि अपनी तो नैया है राम की भरोसे, है ना?
2: नैया तो राम की भरोसे, शिव की भरोसे, गॉड की भरोसे।
1: बिल्कुल, ईश्वर एक ही है, नाम अनेक हो, शक्ति एक ही है। तो मैंने भी कल डिसाइड किया कि कल रखने वाले हैं हम भी उपवास। और बहुत अच्छा, यू नो, अभी आप भी मार्केट से आए हो, यू नो, तो मार्केट में वो रश, वो कांवरतियों का आपने देखा होगा, कैसा लग रहा है आपको माहौल? चारों तरफ वातावरण, शिव जी के भक्त भजन चल रहे हैं, चारों तरफ डीजे की साउंड हमें सुनाई दे रही है भजनों की, कैसा लग रहा है आपको बाहर का माहौल बताओ?
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी जब खासकर जब कावड़ कावड़ जो तीर्थ यात्रा शुरू हो जाती है, जब कावड़ी
1: कावड़ती जो होते हैं श्रद्धालु,
2: हाँ, तो जब श्रद्धालु कावड़िए जब निकलते हैं तो वो जो बचपन में हमें बहुत क्रेज, बचपन से बहुत क्रेज रहा है कि जब कावड़ यात्री जब निकलते हैं ना सारे कावड़िए, तो उनको जय भोले की बोलने, जय भोले की, जय भोले की,
1: राइट।
2: तो हमें हमेशा से वो बहुत रहा है। मैं और मेरी बहन और हम सारे फ्रेंड्स मिलके जाते थे भाग भाग कर, एक भी जो भी कावड़ी है वो मिस नहीं करेंगे,
1: सभी को हम मुझे, हाँ,
2: जो जो आनंद था ना वो बहुत ही अच्छा आनंद आता है,
1: उसमें खुशी भी मिलती थी हमें ना।
2: हाँ, पर आजकल हम खुशी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आजकल हम देखते हैं कि कितने कि आजकल लोग बहुत बड़े बड़े डीजे लेके जाते हैं।
1: हाँ,
2: बहुत बड़े डीजे जो अगर किसी को नॉइज़ की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो उनको हार्म करते हैं।
1: या
2: पर ये तो इतना पवित्र महीना है भगवान शिव के करीब जाने का, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें पूजा पे ध्यान पे भगवान का नाम जपने पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, डीजे भी बजाना चाहिए क्योंकि उससे भी हम क्या होते हैं, भगवान का भजन बजता है तो वातावरण
1: पॉजिटिव होता है,
2: हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ओवर नॉइस ना करें, बहुत ओवर लाउड ना करें डीजे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: वैसे गवर्नमेंट ने भी ये चीजों पर मतलब थोड़ा सा उन्होंने बैन लगाया हुआ है, ज्यादा लाउड वाले जो बड़े बड़े डीजे हैं वो चीजें नहीं है इस बारी, तो उन चीजों को देखते हुए उन्होंने ध्यान में रखते हुए छोटे डीजे का ही अलाउ किया है।
2: हाँ,
1: तो सारी चीजें, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सबके बारे में सोचना चाहिए।
2: हाँ, सबके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स भी होते हैं, हार्ट पेशेंट्स भी हैं आजकल, किसी को कान में प्रॉब्लम है।
1: हाँ,
2: तो सबके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये कितना पवित्र महीना है भगवान शिव के करीब जाने का,
1: और
2: ऐसा लगता है जैसे कि सावन माह में बस सब कुछ चारों हो जाए,
1: चारों तरफ हरियाली होती है, ग्रीन जो फीमेल्स होती हैं वो ग्रीन चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, माँ पार्वती को श्रृंगार करती हैं,
2: जगह जगह भंडारी लगी होते हैं ना।
1: अच्छा, आपने लुफ्त उठाया है प्रसाद का, भंडारी के प्रसाद का आनंद लिया है?
2: मुझे बहुत पसंद है, मुझे भंडारी का भोजन, भंडारी का प्रसाद बहुत बहुत पसंद है।
1: हाँ,
2: मैं पूड़ियाँ नहीं खाती हूँ आपको पता है।
1: हाँ,
2: पर पूड़ियाँ नहीं खाती हूँ, ज्यादा ऑयली चीजें मैं नहीं खाती,
1: लेकिन खीर बहुत टेस्टी लगती है।
2: हलवा नहीं खा पाती हूँ मैं ज्यादा।
1: ओके, पर खीर खा लेती हूँ
2: भोजन। हाँ, खीर पता, मिठाइयाँ भी मैं कम ही खाती हूँ, कुछ कोई भी मीठी चीज मैं कम खाती हूँ, पर जब भंडारी का भोजन होता है तो बस मन नहीं भरता है भोजन से,
1: फिर तो लड़की
2: भी भोजन करते जाओ, मेरा तो मन नहीं भरता, ऐसा लगता है कि बस पता नहीं मैं सब कुछ मैं ही खा जाऊँ,
1: लेकिन बहुत आनंद आता है ना प्रसाद में।
2: वो जो होता है ना, जो जो जो भोजन होता है भंडारे का, उससे ना पेट नहीं भरता। पेट तो भर सकता है
1: लेकिन मन नहीं भरता, मन नहीं भरता।
2: तो हम बहुत मन,
1: वो श्रद्धा भाव से बनते हैं ना, प्रेम से बनता है वो प्रसाद।
2: कभी आपने जब सावन माह आता है तो सब कुछ शिवमय हो जाते हैं, तो हमने एक चीज और, तो हर जगह भंडारे लगी होते हैं,
1: राइट,
2: हर कोई पानी पिला रहा होता है,
1: सेवा सेवा में लगे रहते हैं,
2: सेवा कर रहा होता है, भोजन करवाते
1: हैं,
2: है ना, सेवा में लगा होता है। तो ऐसा मन करता है कि बस जैसा ये कुछ दिन के लिए हमें मिलता है सावन माह में, कि काश ऐसा हमेशा के लिए हो जाए, सब लोग
1: एक दूसरे को हेल्प करें, सेवा करें,
2: भोजन पानी के लिए हमेशा तैयार रहे।
1: श्रद्धा,
2: इस तरह से आपको पता है सड़कों पे भी बड़ा मन लगता है और रातों में भी डर नहीं लगता,
1: चारों तरफ का नजारा बहुत खूबसूरत होता है।
2: ऐसा देखो बस सड़क पे निकल जाओ ना, रोड पे तो इतनी खुशी मिलती है।
1: मैं एक्चुअली ना प्राची, मैं अभी मेरे को 1 ईयर हो जाएगा, पिछले सावन में मैं गई थी वहां पर चरण सिंह चौक पर, वहां से ट्रैफिक उससे भी ज्यादा आगे से ट्रैफिक था, लेकिन पैर रखने की भी ना जगह नहीं थी, इतना ज्यादा भक्तों का रश था। और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक कि इतना इतना भक्तिमय वातावरण है, एंड चारों तरफ वो माहौल, वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब इतना खूबसूरत था ना सब कुछ, मतलब वो नजारा मैं अभी भी जब सोचती हूँ तो बहुत खुशी होती है।
2: खुशी मतलब मैं तो बचपन से अपने पापा के साथ कांवड़ लेने जाती थी।
1: अच्छा,
2: तो जो हम छोटे थे ना तो हम टेम्पो से जाते थे, तो हम टेम्पो से निकल के कहते थे, मतलब हम टेम्पो में खड़े हो जाते थे, टेम्पो बहुत हल्की चलता था,
1: स्लो चलता था, राइट।
2: तो इतना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, जितने भी भोले होते थे तो कहते थे भोली आओ, भोली आओ, भोली भोली खीर लीजिए, भोली इधर छोले चावल लीजिए, मतलब भोली आपको कहीं कुछ लगा तो नहीं है, मतलब पापा

0: और देखिए ना, शिव जी के पास सब कुछ होते हुए भी वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और टाइम में बता देती हूँ, 5:06 हो गए हैं, अब हमारी जाने का टाइम हो गया है। तो हम बाय बाय बोल देते हैं अब अपने प्यारे श्रोताओं को, फिर मिलेंगे आपसे नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। आई होप आपने आज का कार्यक्रम इंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा भी आया होगा हमें पता है। एंड आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा मोबाइल नंबर 9837896896। तो एक बार मिलकर बोलते हैं अपने श्रोताओं को बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे
1: एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: हाँ, और आपने बोला हर हर महादेव, राइट?
1: जय भोले की।
0: तो चलिए दोस्तों, एक शानदार सा ट्रैक हम आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है। तो एड ब्रेक के बाद एक प्यारा सा आपको ट्रैक सुनवाएंगे और अब हम चाहते हैं मिलेंगे आपको बहुत जल्द। बाय।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब दूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती ओके की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ प्यारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो इतने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े सी कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई की किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही।
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उठे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इस बार यानी कि टॉक शो में हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं FIR के बारे में। यानी कि अक्सर जब किसी चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी या किसी अन्य अपराध की घटना होती है तो सबसे पहले एक शब्द सुनने को मिलता है, FIR। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि FIR आखिर होता क्या है? इसे कौन दर्ज कराता है? क्या हर शिकायत FIR बनती है या पुलिस FIR दर्ज कराने में मदद कर देती है? ऐसे में हम आम नागरिक के पास क्या अधिकार है और FIR दर्ज होने के बाद आगे की कानून जो प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ती है आगे? इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर आप बताइए, अब मुझे लगता है कि आपकी बार हमने लेट नहीं कराया है।
3: हाँ बिल्कुल, टाइम पे आपने याद किया है मेरे को, लेकिन आज थोड़ा सा गला मेरा हल्का सा कफ है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं आपके आंसर्स दे पाऊँ।
2: कहीं आप बारिश में तो गीले नहीं हो गए?
3: नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन वेदर थोड़ा चेंज है तो थोड़ा सा गला खराब हुआ।
2: हाँ वो एक्चुअली इसलिए होता है ना सर कि हम AC में रहते हैं, फिर बाहर निकल के जाते हैं तो ठंडा गर्म कुछ इस तरीके से खाने से भी होता है। तो हम अपने शुरुआत करते हैं आज का शो, यानी कि सबसे पहले सर ये बताइए FIR होता क्या है?
3: देखिए पुलिस स्टेशन में FIR जो दर्ज कराने के लोग अधिकतर, एक आपने वर्ड सुना होगा, कोई भी मारपीट हो जाती है, कुछ होती है तो लोग धमकी दे देते हैं मैं FIR दर्ज कराऊंगा और पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। देखिए FIR जो होती है, FIR को हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR जो पुलिस के द्वारा दर्ज करी जाती है, जो भी कोई, अगर कोई क्राइम किया गया है या कोई घटना हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक पीड़ित के द्वारा पुलिस को दी जाती है और जो पुलिस होती है उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उस FIR को रजिस्टर्ड करती है अपने रिकॉर्ड्स में, उसको ही हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड।
2: क्या हर शिकायत FIR होती है?
3: नहीं देखिए, हर शिकायत FIR नहीं होती। यदि मामला संज्ञेय अपराध का है तो FIR दर्ज होती है, लेकिन अगर मामला असंज्ञेय अपराध का है जिसमें कॉग्निजेंस पुलिस नहीं ले सकती तो समानता पुलिस समान शिकायत दर्ज कर सकती है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार होती है उसमें।
2: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है?
3: देखिए संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में ये अंतर होता है कि संज्ञेय अपराध जैसे गंभीर अपराध हो गया, ठीक है, कोई गंभीर मारपीट हो गई, डकैती है, अपहरण है या कोई मर्डर है या कोई ऐसा कोई बलात्कार का कोई ऐसे कोई केसेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या है पुलिस

0: या कोई किसी ने किसी को नुकसान कर दिया या उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी या घर में घुस के मारपीट कर ली, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम अपना जो कंप्लेंट है या FIR हम कैसे दर्ज कराए, कहाँ जाए। तो लोग अक्सर छोटी छोटी बात सोच के चलो टाल देते हैं। ये जो टालने की आदत है किसी दिन बड़ा रूप ले लेती है, एक बड़ा क्राइम बन जाता है। तो FIR दर्ज कराने की सही प्रक्रिया ये है, अगर आपके साथ में कोई भी घटना हुई है आप सबसे पहले थाने जाइए, जो भी संबंधित थाना या नजदीकी चौकी हो वहाँ पे आप जाइए। घटना की पूरी जानकारी आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके साथ क्या क्राइम हुआ है, क्या घटना हुई है, उसकी तारीख, समय, स्थान, जो आरोपी है जिसने वो घटना करी है उसका नाम, उसका पता। अगर मौके पे कोई और भी लोग मौजूद थे जो आपकी तरफ से एक विटनेस बन सके और घटना के बारे में बता सके कि हाँ भाई वास्तव में इनके साथ में मारपीट हुई थी या ये इंसिडेंट हुआ था, तो पूरी सबूतों की जानकारी आप पुलिस को दीजिए। FIR लिखने के बाद उसको आप ध्यान से पढ़िए कि जो आपने चीज बताई है, जो कंटेंट आपने पुलिस को बताया है, क्या वही चीज लिखी है, और अगर वो सही हो जो आपने चीज इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उस पर साइन या अंगूठा लगा सकते हैं। तो आप उसको अपनी कंसर्ट दे सकते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है, बताई गई है।
1: ओके, तो सर अगर शिकायत दर्ज कराने में यानी कि वो 10 दिन या 15 दिन डिले कर देता है तो क्या तब भी हो सकती है?
0: हो सकती है, लेकिन जितनी जल्दी आप सूचना देंगे पुलिस को, जितनी जल्दी आप क्राइम की सूचना देंगे उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। और ये जल्दी अगर टाइम पे चीज दर्ज होती है तो आरोपी को एक तो सबूत मिटाने का टाइम नहीं मिलेगा, पुलिस जांच में तेजी करेगी और उससे जो न्याय है उसमें तुरंत न्याय मिल पाएगा उसको।
1: और सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्वेश्चन है, यदि मुझे लिखना नहीं आता तो क्या होगा?
0: ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि भाई बुजुर्ग होते हैं या कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग होते हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो सोचते हैं कि मैं जाऊंगा कैसे लिखूंगा, कैसे कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपके साथ में कोई क्राइम हुआ है या कोई ऐसी घटना हुई है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाएं, कोई थाने जाएं, वहां पे आप अपनी समस्या बताएं कि भाई मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता या मैं नहीं लिख सकता, मैं सक्षम नहीं हूं। आप मौके वहां पे अपनी पूरी जानकारी, जो भी वहां पे पटल पे जो भी पुलिस अधिकारी बैठे होंगे उनको आप पूरी मौके की अपनी जानकारी दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है, समय बताइए, उसको स्थान बताइए और पुलिस उस घटना को पूरा लिखने में आपकी मदद करेगी, आपको पढ़ के सुनाएगी वो कि ये आपने जानकारी दी और ये हमने इसमें लिखवा दिया है। अगर वो सब सही ही हो तो आप उस पर अपना अंगूठा लगा सकते हैं और अपनी स्तुति दे सकते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से ही ये FIR लिखाई जा रही है।
1: और सर वो ये भी सोचते अपने दिमाग में कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगा?
0: देखिए पुलिस के पास आप जा रहे हैं, पुलिस तो होती है आपकी हेल्प के लिए, तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वहाँ पटल पे जो भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी बैठे रहते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी उनके पास न्याय मांगने जा रहा है, जो भी पीड़ित जा रहा है, वो उसकी हर संभव मदद करें। अगर उसको लिखने पढ़ने में कोई असुविधा है तो एक अधिकारी अपने जो जूनियर पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं, पटल पे जो भी अधिकारी होते हैं, वो उसकी प्रॉपर मदद करते हैं लिखने में। तो इसमें कोई, अगर किसी को लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत है या उसे ज्ञान नहीं है कानून का तो भी वो अपनी हेल्प मांग उस पे
1: कभी कभी मतलब उनको तो कागजों का भी ज्ञान नहीं होता ना सर?
0: हाँ बिल्कुल, तो उसमें कोई घबराने की विषय नहीं है। आप जो है वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है या जो थाना इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं, वहाँ आप अपनी समस्या बताइए तो आपको पूरी मदद करेंगे, ये आपका अधिकार है।
1: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर सर हम FIR दर्ज कराते हैं तो उसके लिए कोई फीस?
0: नहीं, कोई फीस नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं जाता है, ये प्रॉपर बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरीके का कोई भी जो है आपकी तरफ से जो अगर कोई भी वहाँ पे मैटर आपने दिया है या कोई भी जो है आपने समस्या बताई है तो आपको किसी भी तरीके की कोई शुल्क नहीं देना वहाँ पे। अगर कोई मांगता है तो आप उसकी तत्काल जो है उसके शीर्ष अधिकारी से कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, बस आप बने रहिए RJ रीना के साथ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, टॉक शो में आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, जहां हम बात कर रहे हैं FIR के बारे में, जिसके आप जैसे सर ने बताया भी है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी FIR दर्ज कराते हैं, कि अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं वहां आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बीच में मिल भी जाता है और वो आपसे बात करता है और ये कहता है कि नहीं इसके लिए पैसे लगते हैं, पहले मुझे पैसे दो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ऐसे से आपने बचना है, सीधा आप स्टेशन जाइए, वहीं अपनी शिकायत दर्ज कराइए। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, FIR की कॉपी लेना क्यों जरूरी है?
1: देखिए FIR की कॉपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, है ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और वो कॉपी आपको इसलिए लेनी मैंडेटरी है, उसको जरूर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भविष्य में अगर आपने कोई FIR कराई है तो निश्चित तौर पे वो उसका संज्ञान कोर्ट लेती है, कोर्ट उसी FIR के आधार पे आपके केस को निस्तारित करती है, उसको सुनती है। तो अगर आपके पास कोई कागज जो आपने खुद अपनी घटना के बारे में बताया अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ कोर्ट में अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, या भविष्य में कोई कोर्ट या कोई बीमे का आपका मुआवजा है सपोज करिए, या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई है, तो इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी आपको। तो शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं दोबारा बोलूंगा, FIR फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी जाती है, कोई पैसा नहीं आता है, और FIR की कॉपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर कोई भी अधिकारी कोई भी आपसे डिमांड करता है, पैसा मांगता है, तो आप उसके शीर्ष अधिकारी से, जो भी इसके सीनियर ऑफिसर है, इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: क्या बात है,
1: FIR बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी जाती है और उसकी कॉपी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीड़ित को दी जाती है।
0: अच्छा, मतलब जो उसकी कॉपी होती है वो फ्री में ही मिलता है, मतलब इसके लिए कोई पैसा लगता
1: कोई
0: है
1: पैसा नहीं लगता है, ये आपका अधिकार है और आप इसके लिए जो है अपने अधिकार के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर कभी कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, जैसे हम पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जा रहे हैं लेकिन वो नहीं कराते, हमें बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आप कोशिश करिए कि आप अपनी पूरी बात बता के उनको जो है, जो भी आपके थाना इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, उसको आप बताइए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और आपके साथ ये परेशानी है, तो वो आपकी FIR बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं लिखते हैं, तो आप शांत रहिए, आपको कोई भी मिसबिहेव अधिकारी से नहीं करना है, ना कोई एग्रेशन दिखाना है। आप संबंधित अधिकारी से कारण पूछिए कि भाई आपकी कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं हो रही है। उसके बाद भी यदि आप दर्ज नहीं होती है तो आप इस लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक जो आपके क्षेत्र के हैं, जो SSP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं हर सिटी में, आप वहां पे इसकी कॉपी रिसीव करा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं थाने भी गया था, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपकी FIR लिखी जाएगी। और आवश्यक होने पर संबंधित न्यायालय से भी आप उचित उपाय उपलब्ध, आप कोर्ट के थ्रू भी FIR अपनी लिखा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, पहले आपको चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो आप SSP महोदय के समक्ष अपनी।
0: सर दिक्कतें तो बहुत आती है, कभी कभी आपकी जो शिकायत होती है इतनी जल्दी दर्ज तो होती है।
1: बिल्कुल, कई केसेस में हमने देखा है, हमारे पास भी केसेस आते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, तो उस केसेस में हम लोग कोर्ट की शरण भी लेते हैं, कोर्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पे भी FIR दर्ज होती है। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये, पहले आपको एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, आपको चौकी, जो नजदीकी चौकी है वहां पे आप कंप्लेंट करिए, फिर आप SHO के पास जाइए, उसके बाद अगर आप वहां से भी आपको FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही है या आपको टाला जा रहा है बार बार, तो आप SSP महोदय के पास भी आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप न्यायालय की शरण में जाके भी FIR पंजीकृत करा सकते हैं।
0: तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जीरो FIR क्या होता है?
1: देखिए जीरो FIR यदि घटना किसी दूसरे जिले या राज्य से में हुई हो तब भी निकटतम जो पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कराई जा सके, मतलब घटना किसी दूसरे स्टेट में हुई है सपोज करिए, ठीक है, तो जो भी निकटतम थाना होगा वहां पे भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, बाद में उसी संबंधित थाने में भेज दिया जाता है जो उससे संबंधित थाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ घटना हुई है और थाना मेरा जो है, जो पास में नजदीकी थाना है, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, जीरो FIR आप वहां भी दर्ज करा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जहां क्राइम हुआ है संबंधित थाने में, वो FIR वहां पे भेज दी जाती है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है पीड़ित को तुरंत हेल्प करना होता है, ऐसा नहीं कि आप सपोज करिए कि एक वारदात हुई है यहाँ पे और संबंधित थाना ये नहीं लगता है, संबंधित थाना दूर है, तो जो भी नजदीकी थाना है आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ आपकी जीरो FIR दर्ज होगी, उसके बाद वो जीरो FIR दर्ज होकर संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाती है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता है, क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई एज लिमिट होता है?
1: नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती है। जो पीड़ित है, कोई भी पीड़ित हो, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, किसी भी उम्र का हो, उसका अधिकार बनता है। अगर उसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
0: पुलिस स्टेशन में एक नागरिक के क्या अधिकार है?
1: देखिए, हर नागरिक को सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार होता है, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है। यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण भी बताना होता है पुलिस को।
0: जी जी,
1: ठीक है। और परिवार को सूचना भी दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हम इस केस में अरेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस किसी अपराध में या एक्यूज को अगर वो अरेस्ट भी कर रही है तो आप उसको एक ह्यूमन राइट्स के तहत आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप उसको कस्टडी में ले रहे हैं तो ये उसका एक, जिस एक्यूज को गिरफ्तार किया उसका भी राइट बनता है कि उसको वो जाने कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। उसके परिवार को सूचना देनी पड़ेगी पुलिस को कि भाई ऐसे ऐसे इसने अपराध किया था और इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, इसलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। और उसको अपने एडवोकेट से, अपने वकील से मिलने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि
0: मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम आप बिना किसी को सूचना दिए,
1: बिल्कुल भी आपको कानून को ना चाहिए। आपको अगर कोई पुलिस अधिकारी भी आपको अरेस्ट कर रहा है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस जुर्म में आप यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हो। आप अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप अपने वकील से भी मिल सकते हो, ये आपका राइट बनता है, ठीक है। तो आपको अपने राइट पता होने चाहिए। पहली चीज ये कि आप अगर कोई क्राइम ऐसा करें ही नहीं कि आपको ये सारी नौबत झेलने को आए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि अधिकतर फर्जी केसेस भी कई बार दूसरी पार्टी करा देती है,
0: क्वेश्चन में पूछने
1: वाली थी। उसमें ये होता है कि पुलिस अगर कोई एक्शन भी लेती है तो आप सबसे पहले जो अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, पुलिस अधिकारी से पूछें कि आप मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं यहाँ पे, और आप अपने वकील को भी तुरंत फोन करते हैं, आपका वकील से भी आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं और आपका राइट बनता है।
0: मतलब कोई भी आपके ऊपर जैसे झूठा ही केस किसी ने लगा दिया
1: जी,
0: और उस पे आपको अरेस्ट करने आ रहे, तो उसके लिए मतलब वो अपने लिए आवाज उठा ही सकता है।
1: देखिए,
0: कभी कभी इस केसेस में सर उसको मौका ही नहीं मिलता।
1: मोस्टली केसेस में क्या होता है कि पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा गाइडलाइंस ऐसी सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की आ गई है कि बिना इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस किसी को अरेस्ट भी कर लेती है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, तो वो पुलिस के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो मोस्टली केसेस में पुलिस अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही वो एक्यूज को अरेस्ट करती है और प्रॉपर उसका अरेस्ट मेमो बनता है, प्रॉपर उसको जो है उसके घर वालों को सूचना दी जाती है कि किस वजह से हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होती है, एक लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करके ही पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और जो है फिर वो केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट में एज पर प्रोसेस जो कोर्ट के डायरेक्शन होते हैं उसको भी पुलिस वालों को मानना पड़ता है।
0: क्या बात है। तो ये क्वेश्चन हमारा सर अगला महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए कानून में क्या विशेष प्रावधान है?
1: देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे संवेदनशील मामले में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही बयान दर्ज किए जाते हैं। सपोज करिए कोई रेप का केस आ गया, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई एक महिला, एक तो वैसे ही उसके साथ गलत काम हुआ है, फिर किसी जेंट्स को अधिकारी नियुक्त कर दे, तो ऐसा नहीं होता। महिला का अगर कोई केस है वो बहुत ही संवेदनशील मैटर है तो महिला अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है कि भाई आगे की इन्वेस्टिगेशन आप करो। कुछ ऑन द रिकॉर्ड्स चीजें ऐसी होती हैं कि वो एक जो एक लेडीज से बात कर सकती है, वो ज्यादा इजी रहता है। तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किए जा सकते हैं और कानून के अनुसार विशेष जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का पालन कराया जाता है।
0: साइबर फ्रॉड होने पर क्या करें?
1: देखिए, ऑनलाइन ठगी आजकल बहुत देख रहे हैं हम लोग कि अधिकतर आप देखते हो कि हमने वही अभी एक फोन आया था और हमारा फोन हैंग हो गया और पैसे कट गए हमारे, या जो है बैंक फ्रॉड में हो जाता है, या यूपीआई से कई बार फ्रॉड हो जाता है। सोशल मीडिया पे आजकल प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे लिंक को क्लिक करें और आपके पैसे इसमें जो है अकाउंट में आएंगे, तो कई केसेस आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन पे अगर कोई भी ऐसी बात है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 1930, नंबर नोट कर लीजिए आप
0: 1930।
1: अगर कोई भी आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, साइबर फ्रॉड होता है या आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं जो आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी है, तो आप सबसे पहले 1930 नंबर मिलाएं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद साइबर पुलिस में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी जल्दी आपकी जो पॉसिबिलिटी है रिफंड आने की, जो आपका पैसा कटा है वो आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जितनी जल्दी आप साइबर क्राइम में आप शिकायत दर्ज कराएंगे उस पैसे को जो साइबर पुलिस होती है, जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस एड्रेस को देखते हैं, तो अगर आप शिकायत दर्ज करा देंगे तो वो अमाउंट चेक करते हैं कि किस खाते में गई, तो उसको फ्रीज कर लेते हैं वो।
0: ओके
1: हाँ, तो आप 1930 पे कंप्लेंट नंबर है उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं और तुरंत तत्काल इसकी सूचना साइबर थाने में दें जरूर और FIR अपनी दर्ज कराएं उसमें।
0: सर फिर तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि कोई इंसान किसी नंबर पे कर रहा है, गलती से कोई और नंबर, एक नंबर मिस्टेक हो गया।
1: नहीं, मिस्टेक्स हो जाती है, उसका एक प्रॉपर जो है एक प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज को, पैसे को हम वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप 1930 पे आप पहले अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट है आप उसको लॉन्च कराएंगे, फिर आप उसको जो है साइबर थाने में जाएंगे, आप वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनको आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ऐसे ऐसे मेरे खाते से पैसे कटे हैं, तो निश्चित तौर पे आप जितनी जल्दी आप अपनी कंप्लेंट बताएंगे उतनी जल्दी उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें।
0: सो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति FIR दर्ज कराने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते
1: हैं? देखिए, FIR आप दर्ज कराने आते हैं तो सबसे पहले आपको एक शांत रहना चाहिए है ना, उसके बाद आप जो है पुलिस अधिकारी से जो भी वहाँ पे इंचार्ज हूँ उनको आप पोलाइटनेस के साथ में आप अपनी पूरी बात बताइए। लोग क्या करते हैं अधिकतर हमने देखा है कि बड़े एग्रेशन में चले जाते हैं थाने में और जाके साहब ये हो गया वो हो गया, एक की चार बातें बता के आते हैं वहाँ पे,
0: तेवर में चले जाते हैं,
1: तेवर में भी जाते हैं, फिर जो एक्चुअल जो घटना हुई नहीं होती आप वो भी उसमें जोड़ देते हैं कि आप किसी की कहाँ सुनी हुई, तो कहाँ सुनी छोड़ के वो कहता साहब मेरी कहाँ सुनी हुई, इसने मुझे मारा भी, मेरे पैसे भी छीन लिए और चार बातें और एक्स्ट्रा बताता है, उस केस में पुलिस आपकी FIR क्यों दर्ज करेगी? जब आप उस पुलिस को ही मिसगाइड कर रहे हो, आपके साथ जो एक्चुअल घटना हुई, जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ वो तो आप बता नहीं रहे हो और आप उसको बता रहे नहीं साहब मेरे साथ लूट हो गई, मेरे साथ मारपीट हो गई, मेरे पैसे छीन लिए, तो अब जब आप एक की चार चीजें बताओगे तो पुलिस ऑब्वियस समझ जाती है सब बातों
0: से। बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो लोग कितने
0: हाव भाव से
1: समझ जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो अगर आप अपनी सही चीज पुलिस को आप सही जानकारी नहीं दोगे तो वो आपके FIR क्यों दर्ज करेंगे? तो पहली चीज है कि आपके साथ जो एक्चुअल घटना हुई है आप पुलिस को बताइए कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो निश्चित तौर पे पुलिस ऑफिशियल्स आपकी हेल्प करेंगे और FIR भी आपकी लिखी जाएगी।
0: बिल्कुल सर, वो तो झूठ बोलते जो तो इंसान के फेस पे ही दिख जाता है कि मतलब वो क्लियर बता नहीं पाता है।
1: आपको एक जानकारी और देता हूँ कि झूठी सूचना देने पर पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपके ऊपर ही FIR दर्ज हो सकती है।
0: अच्छा, उल्टा ही हो जाएगा
1: जी।

0: अगर आपने कोई झूठा सबूत दे दिया है, आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस में दे दी, तो आप भी फंस सकते हैं, आपको लीगल केसेस का और एफआईआर का सामना कर सकता है, पुलिस आपके खिलाफ भी झूठी सूचना देने का मुकदमा दर्ज करा सकती है।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी का वेलकम है श्रोताओं, आपने बहुत ही शानदार गाना सुना है और हम आपके साथ ही कनेक्ट है। सो अब तक की बातचीत में हमने जाना कि FIR किसी भी आपराधिक मामले में कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, FIR एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर और सच्ची जानकारी के साथ ही करना चाहिए। कई बार गुस्से, गलतफहमी या किसी को परेशान करने की नीयत से लोग झूठ शिकायत या झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी देता है या किसी निर्दोष को फंसाने में कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी कानून सिर्फ पीड़ित की ही नहीं बल्कि निर्दोष व्यक्ति की भी सुरक्षा करता है। तो आइए आगे बात करते हैं सर से, क्या झूठी FIR दर्ज कराने पर भी कार्रवाई हो सकती है?
1: ये तो मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराता है या किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमेशा सत्य और सही तथ्य ही आपको बताने चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आज के इस शो में हम रैपिड फायर करने वाले हैं सर के साथ, यानी कि आप सभी को पता है कि इससे क्वेश्चन पूछने में सर बड़ा मजा आता है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, FIR कॉपी मुफ्त मिलती है?
1: हाँ।
0: जीरो FIR क्या किसी भी थाने में हो सकती है?
1: यस।
0: क्या बिना पढ़े हस्ताक्षर कराना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्या पुलिस से सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार है?
1: हाँ।
0: क्या झूठी FIR कराना अपराध हो सकता है?
1: यस।
0: आम जनता के लिए सर आपका कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे?
1: बस यही है कि आप अपने लीगल राइट्स को जानें, आपके जो अधिकार हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या राइट्स हैं आपके पास में। कानून से डरे नहीं, कानून को समझे। मैं इसलिए कह
0: रहा हूं, सही बात है,
1: कानून से डरना नहीं है आपको, कानून को समझना है आप, ठीक है?
0: बहुत व्यक्ति तो सर FIR दर्ज कराने से पहले सोचते हैं, डरते हैं कि क्या होएगा।
1: अधिकारों की जानकारी रखें आप, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करें साथ साथ, और जागरूक नागरिक ही न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की नींव रखें।
0: तो श्रोताओं, आज के इस बातचीत में हमने बहुत सी जानकारियां प्राप्त करी है FIR के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शिकायत करनी है तो देखिए, एक तो हमें डिसीजन तुरंत लेना है। अगर आप ये सोच रहे कि डिसीजन एक दो दिन बाद या 10 दिन बाद ले, तो उसमें आप डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। दूसरी बात कि कोई भी FIR दर्ज कराने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि ये आपका अधिकार है और FIR दर्ज आप करा सकते हैं। लेकिन झूठी अफवाहों पर आपको FIR दर्ज नहीं करानी है। अगर आप झूठी FIR दर्ज कराते हैं तो आप ही फंस सकते हैं। तो इसलिए बचिए, सही जानकारी के साथ जाइए, क्योंकि इसके लिए आपको सर ने जैसा कि बोला ये कि कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, तो आप आसानी से करवा सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान। और इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

अदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे को आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग। A new thing, something new thing is...
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेज एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर आता है हमारी बोन, बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा, जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो

0: लाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की वो कम हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
1: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
0: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झनझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
1: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
0: बिल्कुल भी नहीं है।
1: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
0: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
0: बिल्कुल,
1: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
1: जी,
0: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आया, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
1: जी जी
0: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
1: ओके,
0: ऐसे।
1: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
0: डेफिनेटली,
1: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
0: बिल्कुल, क्या होता है कि हम, हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेंजी हैं, जेन अल्फा है,
1: बीटा है,
0: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है।
1: Correct.
0: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है, मैं अपने घरों में भी देखती हूँ, बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल मैम।
0: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का। और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
1: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
0: बीच में भी हम देखते हैं,
1: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट। तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
0: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
1: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम।
0: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया। पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निधा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं, तो क्या ये करना चाहिए या फिर
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आस पास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई दर्द चला गया,
1: काम पे,
0: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी, वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
1: करेक्ट।
0: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे हैं, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
1: ठीक है।
0: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
1: तो मतलब ऐसे
0: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे, और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
1: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
0: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
1: ऑलराइट,
0: ठीक है।
1: अच्छा,
0: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
1: ओके,
0: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
1: ओके,
0: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
1: ओके,
0: हॉट फर्मेंटेशन,
1: मतलब फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं है।
1: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
0: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
1: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
0: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
1: ओके,
0: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
1: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
0: बिल्कुल है,
1: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
0: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
1: ठीक है,
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
1: ठीक है
0: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
1: ठीक है, ओके मैम, मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी दर्द,
0: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है वो पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
0: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है, ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
1: फोन,
0: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता। या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है, लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है।
1: ओके,
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
1: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
0: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
0: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि, थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत। मैम थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच। और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडी

0: गार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन और वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपए से 7,50,000 रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025 के नाम से लागू होंगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होंगी जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि और उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधिकारी को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक दिल्ली को भेजना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मयूर विहार फेज 2 में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की तथा उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर मरीज का विश्वास सर्वोपरि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की असल पहचान केवल उसकी रैंकिंग या अच्छी आधारभूत संरचना से नहीं बल्कि उन जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करता है। उपराज्यपाल ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित किरोड़ी मल कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उपराज्यपाल ने कहा कि किरोड़ी मल कॉलेज 7 दशकों से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के ने ऑपरेशन विस्ता के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी 6 विदेशी नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके पाए गए। पुलिस ने कहा कि विदेशी नागरिक के पास से पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की गई, साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 6 लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट की यात्रा की समस्या को रोकने के लिए नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को पकड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले कुल 101 यात्रियों का पता चला और 92,000 रुपए से अधिक का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DSDMA के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ के मानदेय में 100% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है जिन्होंने वर्ष 2009 से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया, लेकिन पिछले 16 वर्षों में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं बल्कि जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक न्याय संगत तथा वेतन संरचना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में इस संवर्ग को और अधिक मजबूत तथा पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि करने पर विचार करेगी। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा तथा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी उपायों पर भी योजना लाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 15 के श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के अंदर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा।
4: महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा कि इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है जिससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महापौर ने स्वास्थ्य जांच शिविर का भी शुभारंभ किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 10 के JMD टेंट में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन में नई उम्मीद बनकर पहुंचती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। भारत की स्वतंत्रता के 79 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मुक्केबाज तथा ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से मौजूद रहीं। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी के 79 साल पूरे होने के जश्न के तहत इस साइक्लोथॉन में 79 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी फिटनेस अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
5: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग केवल फिटनेस नहीं है बल्कि प्रदूषण का सॉल्यूशन भी है। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात ध्यान में रखनी चाहिए।
6: मुझे बहुत अच्छा लगा आज रोके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
0: राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के अभिकल्पक यानी डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी श्री वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगले वेंकैया ने भारत की विविधता को एक राष्ट्र भाव में बांधा। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा, हालांकि राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की अधिसूचित की। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841। सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है? और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर क्या है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
4: देखिए मैं पहले तो आपकी कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज लीगल टॉक जो आपने चलाई है। खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है,
5: बिल्कुल,
4: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ, जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
5: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
4: जी,
5: है।
4: बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
5: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है।
4: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं सपनों का घर बना रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
5: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
4: बिल्कुल।
5: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए।
4: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट ले, 2 लाख में प्लॉट ले, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में, तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसको लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है। रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
5: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
4: देखिए वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
5: क्या बात है, क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
4: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
5: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
4: देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म से चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
5: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
4: देखिए समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती है जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
5: तो श्रोताओं बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ, देखिए बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमें सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो ये जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो बिना रेरा के एक तो वो रोक लग जाती है उस पर, और सबसे बड़ी चीज अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
0: तो अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
1: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है, तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके से अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको परमिशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है, या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करिए, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
0: सो एक बहुत ही ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
1: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी चीज आपको कमिट करी है और रिटर्न में कमिट करी है, तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अपने कंज्यूमर को, जो आप जो एंड यूजर है उनको वो प्रोवाइड कराए, उसको फुलफिल करे, और खरीदार उन सुविधाओं की उससे मांग भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आवश्यकता होने पर आप कानूनी कार्रवाई भी बिल्डर के खिलाफ भी कर सकते हैं।
0: क्या मौखिक वादा अदालत में मान्य होता है?
1: देखिए, अदालत में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है ना, सब चीज लिखित, दस्तावेज अधिक मजबूत साक्ष्य होते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लेना जरूरी होता,
0: मतलब जो लिखित है उसको मतलब ट्रस्ट किया जाता है।
1: कोई देखिए, कोर्ट में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती है, हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान ले।
0: बिल्कुल श्रोताओं, तो देखिए, मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं।
1: बिल्कुल, अगर कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा, या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा, या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रपोजल है, तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है, तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है,
0: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
1: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
0: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
1: देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी

0: या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं। कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रख।
1: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
0: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया है और कल को वो उसे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
1: तो मान्यता है?
0: बिल्कुल है मान्यता।
1: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
0: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
1: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
1: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं।
0: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
0: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में IBC बोलते हैं जिसको, है ना, IBC की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत, संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट कोड की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स हैं उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके ओके, तो मतलब सर क्लियर हो गया अब उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है वो, उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, DD दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर RTGS है, NEFT है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल आप DM से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पे लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके बाद बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए मैलाफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप DD से पेमेंट कर रहे हैं तो DD की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप RTGS के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, तभी आप इनसे बच पाएंगे। तो सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में, और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे कोई उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का, तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, या ऐसी कोई आपको जो है मैलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
0: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
0: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। बाय बाय।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बाकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता है। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

से बेहतरीन बनाया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए। दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम है गीत आपके नाम से। दोस्तों, शाम ने धीरे से कहा थोड़ा ठहर जाओ, शाम ने धीरे से कहा थोड़ा ठहर जाओ, दिन भर के भागदौड़ को आज यहीं छोड़ जाओ, जो पल मिले हैं उन्हें मुस्कुराकर जी लो, क्या पता ये छोटी सी शाम कल की खूबसूरत याद बन जाए।

दोस्तों, संडे की ब्यूटीफुल शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज संडे है लेकिन माहौल में ना, मतलब हमारे जो आसपास का माहौल है वो बिल्कुल सावन की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। एंड कल सावन का सोमवार है पहला, और आज से ही भोलेनाथ के भक्त अपनी आस्था की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अभी मैंने देखा रास्ते में बड़ी संख्या में कांवड़ दिए जा रहे हैं, एंड जाते हुए मैंने उनको देखा और किसी के कंधों पर कांवड़, किसी के हाथों में तिरंगा, जुबान पर बम बम भोले और चेहरे पर एक अलग ही उत्साह। और जो लोग इस वक्त अपने कार में हैं, सफर में हैं, और जो ट्रैफिक में थोड़ा सा अटके हुए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज की शाम हम आपके साथ हैं। कभी कभी ना सफर थोड़ा धीमी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शाम भी धीमी हो जाए। तो ट्रैफिक को ट्रैफिक ही रहने दीजिए और अपने मूड को एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ थोड़ा म्यूजिकल बना लीजिएगा। म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ाइए और एक शानदार सा ट्रैक मैं आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ, यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा। एंड आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस समय, कोई अगर अपना फेवरेट ट्रैक आप सुनना चाहते हैं उसके लिए मैं नंबर आपको बता देती हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9837896896, और समय हुआ है 9:11। तो सुनते हैं एक शानदार सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, मुस्कुराने की वजह तुम हो, अब मुस्कुरा भी दीजिएगा।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों से अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज़। और सच में हमारे शहर का मौसम बहुत ही प्यारा है ना मुरादाबाद का, कि दोस्तों चारों तरफ इतना यू नो पॉजिटिविटी वाला वातावरण है। थोड़ा ट्रैफिक भी है लेकिन कोई बात नहीं है, ये वाला जो टाइम होता है वो भी एक साल में एक बार आता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडजस्ट करना चाहिए। और हमारे पास अभी एक कॉल आया है, उनसे बातचीत करते हैं सर से। देखिए एवरीवन, शो का नाम आपको पता ही है ना, गीत आपके नाम से, और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ आपकी खुशी। हेलो।
1: हेलो मैडम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आप बताइएगा क्या आपका नाम है और कहाँ से आप बात कर रहे हैं?
1: महाराष्ट्र।
0: मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा क्या करते हैं, अपने बारे में भी बताइए थोड़ा सा।
1: मैं टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ मैडम।
0: अच्छा ओके। और एफएम मुरादाबाद कब से सुन रहे हैं आप, कितना समय हुआ आपको
1: मुरादाबाद? अभी कम से कम 4 महीना हुआ।
0: अच्छा 4 मंथ हो गए, कैसा लगता है आपको बताइएगा?
1: अरे बहुत अच्छा लगता है, रोज मॉर्निंग में आनंद का प्रोग्राम आता है, गुड मॉर्निंग, एकदम बड़े बड़े गाना बजाते हैं आनंद जी, और कुछ नए नए अपडेट देते हैं। उसके बाद 10 बजे आपका प्रोग्राम आता है, वो भी सुपर रहता है।
0: ओके,
1: उसके बाद आपका 3 से 5 वो भी सुनता रहता हूँ।
0: अरे वाह, मतलब
1: हर 90s के गाने बहुत अच्छे बज जाते हैं ना, एकदम अच्छा लगता है, और नए नए अपडेट भी बताते रहते हैं।
0: जी जी जी जी सर, बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है अभी?
1: अभी महाराष्ट्र का मौसम ऐसे ही है, थोड़ा रिमझिम बारिश हो रहा है।
0: अच्छा रिमझिम बारिश हो रही है।
1: हाँ हाँ
0: ओके, तो मौसम तो अच्छा है, रिमझिम बारिश हो रही है वहाँ।
1: मुरादाबाद में कैसा मैडम?
0: सर अभी तो बारिश नहीं हुई है लेकिन हाँ ठीक मौसम है, बारिश हो सकती है, बताई तो है, लेकिन कई जगहों पर अलग अलग सिटी में अलग अलग स्ट्रीट में बारिश हो रही है काफी जगह पर। जी तो आज की शाम आपने कॉल लगाया है, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: गुलाम मूवी से आंखों से तुम्हें ये क्या कह दिया, तुझे दीवाना धड़कने लगा।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो सुनवा देते हैं आपको। मोस्ट वेलकम, एंजॉय कीजिएगा आप ये प्यारा सा ट्रैक। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, पागल दीवाना धड़कने लगा। तो सुनते हैं, एंड वो एक ट्रैक भी है ना, आंखें भी करती हैं बातें, तो कुछ चीज बातें ऐसी होती हैं जो हम जुबान से नहीं कह पाते लेकिन हाँ आंखों से वो बातें कर सकते हैं, है ना, लेकिन आंखों की बातें भी हर कोई नहीं समझ पाता है। चलो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अभी फिलहाल ही गाना सुनो।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना दोस्तों, शुरू का नाम है गीत आपके नाम से, और यहाँ पर आप अपना फेवरेट ट्रैक भी सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, आपको हमें कॉल लगाना है। आप हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप इतने प्यारे प्यारे दोस्त हमें मिले हैं, आई एम रियली हैप्पी। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुंजन है, मैं प्राइमरी स्कूल के सामने से बोल रही
0: हूँ। जी बताइए गुंजन, क्या सुनेंगे आप?
1: मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी?
0: मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा कौन सा ट्रैक सुनोगे आप? ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। ओके, तो चलिए गुंजन की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। एंड आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और थोड़ा सा थ्रिल भी लीजिएगा अगर मन है तो।

0: हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मेरा नाम है खुशी और शो का नाम है गीत आपके नाम से। एंड एवरीवन, अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपने पसंद का तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा चांस है। और ये जो शाम है ना, स्पेशली संडे की शाम बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कल की तैयारियां भी चल रही हैं। कल मंडे स्टार्ट होने वाला है, मंडे आने वाला है, और मंडे को वही सारी चीज़ें एंड ऑफिस जाना, एंड उसके अलावा सावन का सोमवार भी है, तो आज से तैयारियां चल रही हैं। मार्केट में मैंने देखा है चारों तरफ वो माहौल, वो पॉजिटिविटी एंड काबरती जा रहे हैं। और कुछ भैया आंटी अंकल जो बेलपत्र फूल वगैरह बेच रहे हैं, इतना खूबसूरत यू नो माहौल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का। और मुझे पता है कि अभी हमारी श्रोता कुछ तो लंच करके मतलब डिनर करके आराम से बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, और कुछ इस समय ऑन द वे कार में हैं, जो सोच रहे हैं कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएं। और कुछ हमारी जो फीमेल्स हैं वो अभी किचन में हैं, जो कुछ बना रही हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे क्या बन रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। चलो अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? कश्मीर से बात कर रहे हैं, क्या नाम बताया आपने, एक बार फिर से बताइएगा।
1: जी नहीं, मलिक मेरा नाम है।
0: ओके, तो बताइएगा सर कैसा है कश्मीर का मौसम?
1: बस बहुत ज्यादा बारिश हो रही है,
0: बहुत ज्यादा बारिश। ओके,
1: पिछले दो चार दिन से अच्छी खासी धूप थी, लेकिन आज सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर भी।
0: अच्छा, तो अभी भी बारिश हो रही है?
1: मैं अभी तो थमसा गया है, लेकिन दिन में अच्छी खासी बारिश हुई थी।
0: अच्छा अच्छा, ओके, दिन में बारिश हुई लेकिन अभी रुक गई है ना?
1: बिल्कुल अभी रुक गई है
0: जी। तो बताइएगा आप एफएम मुरादाबाद कब से सुन रहे हैं और कैसे सुनते हैं?
1: मैं मोबाइल ऐप के जरिए आपकी प्रोग्राम सुनता हूँ। दरअसल मेरा वहाँ दोस्त रहता है, मूलता वही के है, लेकिन रेडियो के जरिए हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी है, तो वो आकाशवाणी श्रीनगर को सुनते हैं और मैं वहाँ के प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: क्या नाम है आपके दोस्तों का?
1: वो उसका दो चार दोस्त है, एक मोहम्मद फरमान साहब है, मुकेश कश्यप भाई है।
0: ओके ओके
1: जी जी,
0: तो आज आपने कॉल लगाया है सर, बताइएगा आज की शाम क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: साजन चली ससुराल, ये फिल्म का नाम ही गाने के बोले दिल जाने जिगर तुझे निसार किया है।
0: ओके, तो चलिए सुनवाते हैं सर ये प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, और आप भी सुनना चाहते हैं कोई गाना तो कॉल लगाना मत भूल जाना। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896, करते हैं अभी आपसे बात, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ये शानदार से गाना। गोविंदा जी और साथ में करिश्मा कपूर, क्या खूब लगे थे ना दोनों। चलो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत, शायद नेक्स्ट कॉलर आप ही बन जाएं, कुछ भी हो सकता है, जल्दी से कॉल लगा लीजिएगा।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: कोई मिल गया,
5: कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है गीत आपके नाम से और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लिसनर तो हमें कॉल लगाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं कि काश मेरा कॉल लग जाए, बस एक बार लग जाए, है ना। बहुत शिद्दत के साथ आप नंबर लगा रहे हो ना, तो आप लगाते रहिए। कीप ट्राइंग एवरीवन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, हाय दी,
0: हाउ आर यू, क्या हाल है आपकी, बताइए जरा जरा बताओ।
1: जी, मेरे हालचाल बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसी हो।
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप अपना नाम भी बताइएगा।
1: जी दी, मैं अस्कबी कनपुर जिला मुरादाबाद से आपके निमिक्स होता अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी बोल रही है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
1: सेम टू यू दी।
0: तो कैसा लग रहा है, किस किस के मैसेज आए आपके पास सुबह सुबह? हाँ,
1: आज मेरी दोस्त ने विश किया थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने।
0: अच्छा, तो कैसा लगा जब आपकी बेस्ट फ्रेंड का मॉर्निंग में मैसेज आया, उन्होंने विश किया, तो कैसा लगा आपको बताइए हमें।
1: बहुत खुशी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन भी मतलब मुझे कोई मजबूरी थी इसलिए मैं उन्हें विश नहीं कर पाई।
0: ओके,
1: हाँ
0: चलो कोई बात नहीं,
1: कुछ मजबूरी ऐसी हो जाती है ना दी कि हम नहीं कर पाते।
0: हाँ, चाह कर भी नहीं कर पाते, हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिल से दिल का रिश्ता है वो स्ट्रांग होना चाहिए।
1: दी बिल्कुल, दिल से दिल का रिश्ता है, वो समझ गई होगी मैंने क्यों मैसेज नहीं किया उनको।
0: समझदार के लिए इशारा काफी है, है ना। तो बताइएगा अफरोज, आज आपने कॉल किया है इतने ब्यूटीफुल मौके पे, क्या सुनेंगे आप?
1: आज मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की पसंद का एक सॉन्ग सुनना है, उनको उनका फेवरेट सॉन्ग है।
0: बताइएगा।
1: मुझे सॉन्ग सुनना है, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना।
0: ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, ये तो आपने बोला ही नहीं है।
1: जी तो ये आपने बोल दिया ना।
0: अच्छा ओके, इसलिए आपने कंप्लीट नहीं किया था।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: ओके,
1: हम दोनों भी तो दोस्त है ना, तो इसलिए आधा मैंने बोल दिया आधा तुमने।
0: हाँ जी बिल्कुल, बताएगा। और कुछ लाइनें कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइबा को बोलना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए एक शायरी लेकर आई हूँ, और जितने भी रेडियो लिसनर दोस्त जितने भी सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी को हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे बोलना चाहती हूँ।
0: ओके,
1: और स्पेशली मेरी लाइबा के लिए कुछ लाइन है। न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, अपने अपने दोस्ती बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, तुम वहाँ से याद करना हम यहाँ मुस्कुराएंगे।
0: अरे वाह, यहाँ मुस्कुराएंगे। अच्छा, जब हम बातें करते हैं क्या आप भी मुस्कुराती हैं, जरा बताइए हमें।
1: आती, क्योंकि मुस्कुराती हुई लड़कियाँ और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं।
0: हाँ जी, ये तो है, मुस्कुराते हुए हर इंसान खूबसूरत लगता है। एंड देखो, कभी आपने नोटिस किया होगा जैसे आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, है ना, एंड या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो अपने आसपास सब लोग मुस्कुराते हैं, बातचीत करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना माहौल।
1: लगता है भी, और खुशी भी बहुत होती है।
0: खुशियाँ भी बहुत होती है, खुशी भी बहुत होती है, चारों तरफ खुशियाँ होती है, तो
1: बहुत अच्छा भी लगता है। और हर इंसान को भी क्या है ना, कहते हैं ना, अगर गम भी हो ना, गम में भी इंसान हो तो उसे मुस्कुराना चाहिए।
0: और जिसको मुस्कुराना आ गया तकलीफ में, वो आधी जंग तो तभी जीत लेता है।
1: मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर मेरे चेहरे पे उदासी हो तो ये मुस्कुराना नहीं छोड़ती।
0: हाँ, सेम पिंच हम भी ऐसा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिंदगी है, जिंदगी में तकलीफें चलती रहती हैं, लेकिन हम अपनी तकलीफों की वजह से सामने वाले के चेहरे पर तो उदासी नहीं देख सकते ना।
1: कुछ लोग होते हैं ना, मतलब गम में मुस्कुरा नहीं पाते, कुछ लोग होते हैं कि अपने आंसू अपने गम सब छुपा लेते हैं, मुस्कुराहट बरकरार रखते हैं।
0: राइट, और ये बहुत अच्छी स्किल है।
1: हाँ जी,
0: तो चलो सुनवाते हैं ये प्यारे से गाना। हाँ जी, ओके श्योर, तो सुनिएगा ये खूबसूरत सा ट्रैक। एंड एवरीवन, आप भी कॉल लगा सकते हैं, आप भी बोला कि कॉलर हमारे लिसनर बन सकते हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा। बाकी गाना सुनो।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने ये खूबसूरत सा गाना सुना और अभी हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका?
1: जी विपिन राजपूत, गुमटान से बोल रहे हैं जी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है। और आप सुनाइएगा, आपके स्टूडियो में तंगी में सब बहुत अच्छे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: इस समय तो बस आराम कर रहे हैं।
0: अच्छा, आराम कर रहे हैं। ओके, तो बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगी सर आप?
1: गाना आपको अपनी मर्जी से कोई टाइप सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद आपने कॉल किया। थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिएगा सर, क्योंकि जिंदगी बहुत प्यारी है। ठीक है जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना और इसी गाने के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी सेम टाइम आपको टुमारो मॉर्निंग 10 बजे। एंड बस जाते जाते इतना याद रखिएगा जिंदगी में दोस्तों, हर दिन खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ खूबसूरत ज़रूर होता है। तो मुस्कुराइए, अपने अपनों को याद कीजिए और इस प्यारी सी रात को सुकून के नाम कर दीजिए। अब मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, फिर मुलाकात होगी हमारी कल सुबह नई बातों के साथ, नए मुस्कान के साथ और ढेर सारी खुशियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर। Take care, everyone.

बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।